FM के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:54 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए चलते हैं हिंदी में समाचार के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: सुबह के 6 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श

0: करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में 4थे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

आज का चिंतन। साथियों, जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में आप अकेले ही होंगे और यही समय आपको बुद्धिमान, समझदार और निडर बनाएगा, इसीलिए डटे रहें। ये था आज का चिंतन। अब भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे देते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में। आपको सुनवाते हैं झरोखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा। आज भाग 245 आप सुनेंगे। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इसका भाग 10 आज प्रसारित होगा। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह। सुबह 7 भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुबह 8 दिल्ली केंद्र से सुनेंगे आप समाचार प्रभात। 8:15 पर सुबह और पुनः दोपहर 2 आप सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष कार्यक्रम। लेखक मिलिंद सबनिस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इसका भाग 36 आज प्रसारित होगा। सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा गीतकार असद भोपाली पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा हेलो फरमाइश सुबह 10 और 11 रंग तरंग। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल और दोपहर 1 सुरीला सफर।

2:30 पर सुनेंगे आप सदा बहार नगमे और 3 बजे हेलो सहेली संवादक मंजरी वर्मा। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी है वो पुरानी बेंच, लेखिका सौम्या शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7 बजे, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज गुलदस्ता। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रहसन फोकट चंद, लेखन अनिल निगम का है, निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का। आठ बजकर 45 पर आप सुनेंगे समाचार, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, छाया गीत सुनिएगा रात 10 बजे, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: पंडित जी, आप बताइए लोक संगीत में बांसुरी का क्या योगदान रहा है? बहुत सारे जो गायन के प्रकार हैं, ठुमरी है, झूला, कजरी, चैती, तो आप इन गायन के प्रकार में बारीकियां बताइए और कैसे आया लोक संगीत में बांसुरी?
2: देखिए, बांसुरी तो लोक संगीत का ही वाद्य है
1: जी,
2: शास्त्रीय संगीत में तो था ही नहीं है।
1: बाद में आया।
2: पन्नालाल घोष जी नहीं होते तो आज भी नहीं होता
1: जी। जी,
2: तो जैसे चैती, झूला, सोहर, ठुमरी, कजरी, क्या नहीं बसता। अब आप बताइए, दो अंग के ठुमरी, खास करके पूरब अंग जिसमें गया की ठुमरी, बनारस की ठुमरी
1: जी,
2: दोनों कमाल है। गया भी कोई पीछे नहीं है। और पंजाब में आप चले जाएं तो थोड़ा नाक से नेजल होके गाते हैं। इन सब अंगों को मैंने बहुत करीब से देखा है ममता जी,
1: जी और बांसुरी में लाया उसको,
2: बिल्कुल। यहाँ तक कि अनूप जलोटा जी बोले कि सबसे अच्छा, मैं कुमार बोस जी के साथ एक कार्यक्रम नेहरू सेंटर में बजा रहा था
1: जी,
2: अजीत भाई भी वो प्रोग्राम सुनने आए थे और ऐसा धमार पंडित कुमार बोस जी बजाए थे कि क्या कहूँ आपसे
1: जी, जी।
2: मैं भावुक हो गया हूँ उनका तबला याद करके। ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं,
1: बिल्कुल।
2: कभी कभी आते हैं ऐसे लोग, बड़ा अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ बजाते हैं। खैर, मैं खो गया था
1: जी।
2: तो अनूप जलोटा जी ने कहा कि आपने एक फ्रेज में जो आज पंजाब से बनारस गए वो सुनने जैसा था, मैंने ये कभी नहीं सुना आज तक। जलोटा जी खाना खाने के लिए ले गए मुझे प्रोग्राम के बाद।

0: तो मैं दोनों अंग थोड़ा थोड़ा आपको
1: जी, मैं तो आपसे यही कहना चाह रही हूं कि आप यहाँ श्रोताओं को भी ले चलिए बनारस और पंजाब एक साथ, कैसे आप जाते
0: आप
1: हैं।
0: देखिए, मैं सबसे पहले झूला धीरे से झूला ना बनवारी अरे सांवरिया,
1: क्या बात है, वाह
0: इसका क्या रंग है देखिए।
1: जी। और ये अप्पा जी ने, विदुषी गिरजा देवी ने भी गाई है ये हमारे
0: हाँ,
1: पास
0: मेरे
1: उनका
0: लिए तो वो
1: रिकॉर्ड।
0: गिरजा बुआ है
1: जी,
0: है देखिए, मुझे कभी लगता ही नहीं कि वो गई है, और लगता है कि वो, क्योंकि मेरे पिताजी को राखी बांधती थी बनारस में,
1: वाह
0: तो
1: क्या
0: मेरे लिए वो
1: बात है।
0: बुआ जी है,
1: जी,
0: अप्पा जी लोग कहते हैं, मैंने हरदम उनको बुआ जी कहा, और महाराज जी को चचा,
1: जी,
0: किशन महाराज जी को,
1: जी
0: और बनारस में हम लोग बड़ों को तू कहते हैं,
1: जी जी जी
0: का हो तू का करत हुआ,
1: हाँ,
0: तो तुहार आज्ञा हो तब ना बजाई, तो
1: जी,
0: ये चलन है
1: हाँ।
0: वहां का।
1: तो यहाँ तो मैं तो ये चाह रही हूँ कि आप चूंकि गायन की कला में भी महारथी हैं, तो थोड़ा सा गा के भी और
0: मैं
1: बांसुरी में भी
0: जरूर
1: सुनाएं।
0: गाऊंगा, झूला
1: और
0: गाए बिना कैसे चलेगा।
1: जी,

0: वाह, अद्भुत था ये तो। ये रचना बिल्कुल अद्भुत है। झूला ऐसे लग रहा है कि नीम का पेड़ है और झूला डला हुआ है, पटोहा है और पटोहे पे दो लड़के पींग मारा करते थे
1: जी
0: और महिलाएं पटोहा पे बैठ के ये
1: पटवा
0: झूला गाती थी,
1: जी,
0: गाती हैं, थी क्या, अभी भी ये परंपरा है।
1: अभी ये परंपरा है
0: हाँ
1: ना।
0: जी, और अब कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि पेड़ ही कम हो रहे और लोगों के पास समय कम हो रहा, मोबाइल आ गया है, लेकिन अभी भी परंपरा गांव में शेष है। तो वो सीन, वो

0: दृश्य आपने आंखों के सामने पैदा कर दिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा लगा। तो अब इसके बाद गायन की कौन सी शैली, कौन सा प्रकार आप शामिल कर रहे हैं इसमें?
1: मैं देखिए, ये लोक संगीत में जब हम जाते हैं तो बंगाल को छोड़ नहीं सकते,
0: जी
1: क्योंकि बंगाल को दुनिया दिखाया किसने?
0: जी
1: सचिन देव बर्मन ने।
0: जी भटियाली संगीत,
1: भटियाली को सुनो मेरे बंधु रे, जब उन्होंने
0: हाँ
1: किया और उन्होंने जब गाया फिल्म सुजाता में,
0: जी
1: तो लोग हैरान रह गए कि ये क्या है, यहां कौन है तेरा, ये कहां का स्टाइल है? गाइड का वो गाना,
0: जी
1: मुसाफिर जाएगा
0: जाएगा
1: कहां,
0: कहाँ
1: सुन मेरे बंधु रे।
0: फिर।
1: मैं आप देखिए, मैं थोड़ा सा सुन मेरे
0: जी
1: बंधु
0: जी
1: रे
0: प्लीज
1: सुना के
0: सुनाइए
1: फिर
0: सुनाइए।
1: मेरे पिताजी की रचना जो है
0: हाँ
1: भाटियाली में वो सुनाऊंगा।
0: जी जी
1: ला ला ला
0: जरूर
1: ला ला ला ला ला ला ला ला
0: जरूर
1: ला ला ला, कोत्ताया माय लोइया जाबे शोहर दखाइते। मेरे पति मुझे शहर घुमाने ले जाएंगे,
0: वाह
1: उसलिए मैंने ये तैयारी की है। ये
0: जी
1: गाने
0: जी
1: का बोल भी बहुत सुंदर
0: जी
1: है।
0: जी सुनाए प्लीज। हम तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा गा के भी सुनाएं, बांसुरी पर भी सुनाएं।

0: वाह, अद्भुत। अब लग रहा है कि कुछ बात ही नहीं करें, सिर्फ बस आपसे अनुरोध करते जाएं कि बांसुरी की धुन आप सुनाते
1: रहें। बहुत शुक्रिया।
0: लेकिन हमें पता है कि आपकी सांस को भी थोड़ा विराम चाहिए, ठहराव चाहिए, बीच बीच में हम बातें भी करते रहें। तो पंडित जी, अपने पिताजी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए, उन्होंने तो बांसुरी की दुनिया में आपको लाया।
1: हर व्यक्ति को अपने पिता भगवान के बराबर लगते हैं और लगना भी चाहिए। मेरे पिताजी थे इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, कल्पेश ने भी देखा कि वो कितने संत थे और एक फकीर की तरह थे
0: जी।
1: और इतने गुण एक व्यक्ति में मैंने तो नहीं देखा।
0: जी जी
1: पंडित रविशंकर जी ने कहा मुझे, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी ने, यू आर लक्की टू हैव सच फादर। उनके जैसी पेंटिंग ना किसी ने बनाया, ना कोई बनाएगा आगे भी। नेहरू जी उनके फैन थे, उनके जैसी भाटियाली मैं तो आज भी नहीं बजा सकता
0: जी।
1: मैंने कोशिश की उन्हीं की कंपोजिशन, उनके जैसा राइटर सोचिए, कोत्ता यामा लोहिया जाबे शोहर दिखाई थे, एबीसीडी एक्सो वाइजेड लागलो पढ़ाई थे, तो कैसा राइमिंग है देखिए, रदीप काफिया जो बोलते हैं
0: जी
1: हम
0: जी जी
1: बंगाली में, बहुत मुश्किल है फनी गाना लिखना।
0: जी जी
1: इतना आसान नहीं है
0: जी, बिल्कुल। गंभीर लिखना आसान है,
1: गंभीर लिखना आसान है
0: बिल्कुल, मजाहिया लिखना मुश्किल।
1: बहुत ही ज्यादा उनसे मैंने सीखा और उन्होंने

0: आपने मुझे पीलू में, बनारसी पीलू, उनसे जो सीखा मैंने, कोमल रे लगाना। मैं 2 मिनट आपको सिर्फ
1: जी जी सुनाए प्लीज।
0: पीलू का रे सुना रहा हूं, मेरे पिताश्री की याद में।

0: वाह गजब। अब आज की इस कड़ी को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। कल नई जानकारी और बांसुरी की तान के साथ उपस्थित होंगे फिर से। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस थोड़ी ही देर में।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत अफसाना फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, असद भोपाली का लिखा गीत है, हुस्न लाल भगत राम का संगीत। श्रोताओं आपको बता देते हैं कि गीतकार असद भोपाली का आज जन्मदिन है, उन्हीं की याद में आज हम उन्हीं के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं तू नहीं और सही, इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, असद भोपाली का लिखा गीत, रवि का संगीत।

0: जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
4: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार असद भोपाली के द्वारा लिखे गीत क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत आया तूफान फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की है। असद भोपाली गीतकार हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में स्वागत है। अब आपको सुनवाते हैं रंगीला राजा फिल्म का गीत, तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की युगल स्वरों में। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा, शिवराम का संगीत है।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का,
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: भूले बिसरे गीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं असद भोपाली के शब्दों से और हंसराज बहल के संगीत से सजा ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, फिल्म का नाम है सावन।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी, सुधा मल्होत्रा और मुबारक बेगम के स्वरों में। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा, ए आर कुरैशी ने धुन बनाई है। फिल्म का नाम है सिम सिम मर्जीना।

एफएमएंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए पेश है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं के सूचना कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत इस विचार से करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। इस सुविचार के बाद आइए जानते हैं आज का इतिहास। क्यों है खास आज का दिन, किनका है आज जन्मदिन और किनकी है आज पुण्यतिथि।

श्रोताओं, आज है 10 जुलाई। 10 जुलाई 2006 में आज ही के दिन इनसेट 4C भारत का भू तुल्यकालीन उपग्रह था, जिसे प्रमोचक रॉकेट GSLV-F2 ऑनबोर्ड इनसेट 4C सहित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया गया था।

आज ही के दिन 2008 में भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को बेस्ट ऑफ बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था और 10 जुलाई 2017 में आज ही के दिन अमरनाथ

श्रोताओं, आइए जानते हैं आज के दिन जन्मे लोगों के बारे में। 10 जुलाई 1921 में असद भोपाली का जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध गीतकार और शायर थे। 1950 में आज ही के दिन प्रवीण सुल्ताना का भी जन्म हुआ था, जो भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थीं। और 1949 में आज ही के दिन सुनील गावस्कर का जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। और 1910 में आज ही के दिन कर्नल धर्मवीर सिंह का जन्म हुआ था, जो भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों में से एक थे।

श्रोताओं अब आइए उनके बारे में जान लेते हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है। 10 जुलाई 2014 में जोहरा सहगल का निधन हुआ था, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री और रंगमंच कलाकार थी। आज ही के दिन 2006 में अहमद नदीम कासमी का निधन हुआ था, जो प्रसिद्ध शायर थे। और 1971 में आज ही के दिन भिखारी ठाकुर का निधन हुआ था, जो भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार थे। 1927 में आज ही के दिन सर गंगाराम का निधन हुआ था, जो प्रसिद्ध इंजीनियर, समाजसेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक थे। आप सभी को विनम्र श्रद्धांजलि आकाशवाणी परिवार की ओर से।

श्रोताओं, भाई ये कार्यक्रम में वक्त है आपको एक खूबसूरत गीत सुनाने का, तो कल की आवाज़ फिल्म से ये गीत सुनते हैं। कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में समीर का लिखा ये गीत है, नदीम श्रवण का संगीत है, तो आइए सुनें।

बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना कल की आवाज़ फिल्म से, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का हाल और साथ ही साथ मौसम का पूर्वानुमान। जिला जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार श्रावण मास 2026 के अवसर पर चेनारी प्रखंड स्थित प्रसिद्ध गुप्ता धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, विधि व्यवस्था एवं आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 9 जुलाई 2026 को वन विश्रामागार बादलगढ़ चेनारी में जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम वन, गुप्ताधाम पूजा समिति के अध्यक्ष, संबंधित विभागों के पदाधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, भीड़ नियंत्रण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के उपरांत जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ गुप्ताधाम का स्थलीय निरीक्षण कर गुफा परिसर एवं आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में गुप्ताधाम पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि श्रावण मास में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु गुप्ताधाम पहुँचते हैं तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए समिति द्वारा बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। इस पर जिला पदाधिकारी ने पूजा समिति को सभी स्वयंसेवकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि उनका पहचान पत्र निर्गत किया जा सके और वे सुव्यवस्थित ढंग से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर सकें। जिला पदाधिकारी ने गुफा के भीतर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराने तथा गुफा की ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। सावन माह में गुप्ताधाम क्षेत्र में चार पहिया एवं बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दोपहिया वाहनों का परिचालन

जारी रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 50 मीटर पहले बैरिकेडिंग कर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं स्वयं सेवकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, जिससे श्रद्धालुओं को नियंत्रित एवं व्यवस्थित तरीके से गुफा में प्रवेश कर सके। उन्होंने निर्देश दिया कि गुफा से 50 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार की दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भीड़ प्रबंधन एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गुप्ता धाम परिसर में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत कराने हेतु कार्यपालक अभियंता PHED को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही गुफा के अंदर एवं बाहर नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने विद्युत विभाग के कनीय अभियंता को नंगे विद्युत तारों को तत्काल ठीक कराने का निर्देश दिया। श्रद्धालुओं की सहायता एवं त्वरित सूचना उपलब्ध कराने के लिए गुप्ताधाम परिसर में हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा अनुमंडल स्तर पर विभिन्न स्थानों पर कंट्रोल रूम संचालित करने का भी निर्णय लिया गया। सिविल सर्जन को एम्बुलेंस की व्यवस्था एवं मेडिकल कैंप लगाने का निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष चेनारी को निर्देश दिया कि श्रावण मेला अवधि के दौरान गुप्ताधाम में सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करें। और श्रोताओं, आइए जानते हैं मौसम का हाल। आज सुबह सूर्योदय हुआ 5:11 पर और सूर्यास्त होगा 6:43 पर। आज दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहने वाला है और रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री। दिन में धूप निकलेगी, बादल छाए रहने और गरज के साथ बिजली गिरने, तेज वर्षा की भी संभावना है। और श्रोताओं, आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा गीत। फिल्म फकीरा से लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत और संगीत दोनों ही रविंद्र जैन के हैं।

फकीरा फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और श्रोताओं, भाई अपने कार्यक्रम में लौटते हैं और सुनते हैं विभिन्न समाचार पत्रों में छाई आज की सुर्खियों को। चारों अखबारों के साथ हम हाजिर हैं, जिनमें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और प्रभात खबर शामिल है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनेंगे। बिहार में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभियान चलाकर इस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का अद्यतन डेटाबेस तैयार करने तथा यह समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से सभी लाभुकों तक योजना का लाभ पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की। 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने पर केंद्रीय मंत्री ने भी अपनी सहमति दी। समीक्षा बैठक में खाद्य सुरक्षा को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं तकनीकी आधारित बनाने पर विचार विमर्श किया गया। प्रभात खबर की सुर्खी है, शिक्षक तबादला 16 से 20 जुलाई के बीच होगा ऑनलाइन आवेदन। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित तबादला पोस्टिंग की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था की तैयारी तेज कर दी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार रिक्तियों का अंतिम डाटा तैयार करने के बाद शिक्षकों से ऐच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। रिक्तियों की अंतिम फीडिंग पूरी होने के बाद विभाग ट्रांसफर पोर्टल खोलने की तैयारी

में है। सूत्रों के अनुसार 16 से 20 जुलाई के बीच शिक्षकों से ऐच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार 10 जुलाई तक विद्यालयवार रिक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद 11 जुलाई को सभी वीडियो और डीपीओ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रभात खबर की ही दूसरी सुर्खी है, परिवहन निगम खरीदेगा लो फ्लोर बसें, मंत्री ने दिए निर्देश। राज्य भर में दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को बस यात्रा के दौरान बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के मंत्री दामोदर रावत ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को दिशा निर्देश दिया है। मंत्री ने निगम को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में खरीदी जाने वाली सभी बसों को लो फ्लोर मॉडल में ही क्रय किया जाए ताकि आम यात्रियों, खासकर के कमजोर वर्गों को चढ़ने उतरने में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि सड़कों पर चलने वाली बसें हर वर्ग के यात्रियों के अनुकूल हो। यह बसें दिव्यांगों, वरीय नागरिकों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी। विभाग की कोशिश है कि आगामी 400 पीएम ई बसें भी पूरी तरह लो फ्लोर हो। लो फ्लोर बसों में सीढ़ियों की जगह हाइड्रोलिक रैंप लगा रहेगा। उन्होंने कहा कि लो फ्लोर बसों में सीढ़ियों की जगह हाइड्रोलिक रैंप लगा होता है जो आसानी से खुलता और बंद होता है। दिव्यांग यात्री व्हीलचेयर के साथ भी इन बसों में सीधे प्रवेश कर सकते हैं, वहीं इनकी ऊंचाई भी सड़कों से कम होती है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, गया पटना रेलखंड पर चोरों ने 30 मीटर ओवरहेड तार काटा। गया पटना रेलखंड पर गुरुवार सुबह अज्ञात चोरों ने ऊंटा मदारपुर के पास रेलवे की ओवरहेड हाई टेंशन बिजली लाइन का करीब 30 मीटर तार काट दिया। इस वजह से डाउन लाइन पर सुबह 4 बजे से 6 बजे तक करीब 2 घंटे रेल परिचालन पूरी तरह ठप रहा। इस घटना के कारण गंगा दामोदर एक्सप्रेस, हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस, पलामू एक्सप्रेस और गया पटना मेमू सहित कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी रही। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दैनिक भास्कर की ही सुर्खी है, बोधि वृक्ष स्वस्थ पर मिला मिलीबग का हल्का प्रकोप, हुआ इको फ्रेंडली स्प्रे। बोधि वृक्ष पूरी तरह स्वस्थ है, हालांकि उस पर मिलीबग का हल्का प्रकोप देखा गया। बारिश से पहले महाबोधि मंदिर परिसर के पवित्र बोधि वृक्ष की सुरक्षा के लिए निवारक इको फ्रेंडली देखभाल के दौरान ये बातें कही गई। गुरुवार को बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति ने देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर महाबोधि महाविहार मंदिर परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष और आसपास के वृक्ष की सुरक्षा के लिए निवारक इको फ्रेंडली कीट प्रबंधन के उपाय किए। नियमित वैज्ञानिक निरीक्षण के दौरान संस्थान के वैज्ञानिक शैलेश पांडे और संतन भरतवाल ने पवित्र बोधि वृक्ष पर हल्की मिलीबग का प्रकोप देखा था जो कि अब पूरी तरह स्वस्थ है। और श्रोताओं, भाई जानते हैं अर्थ जगत और खेल जगत का हाल। सबसे पहले जानते हैं खेल जगत का हाल। बिहार के सेतु मिश्रा ने भारत को मिक्स्ड रिले में दिलाया स्वर्ण। भारतीय खेल इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। चीन में आयोजित एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। भारतीय चौकड़ी ने मेजबान चीन को पछाड़कर पोडियम पर पहला स्थान हासिल किया। इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े हीरो बिहार के उभरते हुए स्टार एथलीट सेतु मिश्रा रहे। सेतु ने टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंकर लेग आखिरी से ठीक पहले का चरण संभाला और चीनी धावक भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दे रहे थे, तब सेतु ने अपने असाधारण धैर्य और रफ्तार का प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया। और अब आइए जानते हैं खेल जगत का हाल। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी हो सकते हैं सस्ते, हटाए गया कलपुर्जों पर आयात शुल्क। आने वाले दिनों में देश में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें कम हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेयर बल्ब और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कोयल मॉड्यूल के उत्पादन के लिए आयातित सामान पर मूल सीमा शुल्क यानी कि BCD माफ कर दिया है। यह छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। यह फैसला भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और श्रोता, इसी के साथ नमस्ते रोहतास का आज का यह अंक अब यहीं संपन्न होता है।
कल एक

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसर

0: पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
1: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर

0: देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
2: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7

0: से समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

फिर भी दिल है हिंदुस्तानी इस फिल्म का देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा था और जतिन ललित का संगीत था। श्रोताओं, इसी के साथ देशभक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, भाई सुनते हैं अगला कार्यक्रम फरमाइशी पत्रों पर आधारित पसंद आपकी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस खूबसूरत कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आपने प्यारे प्यारे पत्र भेजे हैं, उन्हें इस कार्यक्रम में हमने शामिल कर लिया है। पहला पत्र हमें मिला है थाना मोड़ गढ़नौका रोहतास के श्रोताओं का। आप हैं मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और सहबाज का। आप सबों ने सुनना चाहा है गीत गाता चल फिल्म का खूबसूरत गीत, तो आपको आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे ही। एक और पत्र ले लेते हैं। इन्होंने लिखा है अपनी पसंद से कोई भी गीत सुनवा दें। आप हैं ब्रह्मपुरा मनीगाछी से भाई अच्छीलाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। तो चलिए आप सभी को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत गाता चल फिल्म का गीत आरती मुखर्जी की आवाज़ में।

बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे, गीत गाता चल फिल्म से आरती मुखर्जी की आवाज़ में ये गीत। अब आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में बरसात फिल्म का गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, आराध्या और लल्लू पंडित। मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से इसी गीत को सुनना चाहते हैं फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित सुमित छोटू और बी के सुरगनैया। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत बरसात फिल्म से हम सुनवा रहे हैं। एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है और ये श्रोता है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। तो चलिए आप सभी को सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में बरसात फिल्म का ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: So easy.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ब्रेक के बाद श्रोताओं स्वागत है आप सभी का पसंद आपकी कार्यक्रम में। और श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत, अब प्रेम कहानी फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है पठानटोली कलेर से आसिफ खान, निखत प्रवीण, सदा फारजू, साहिल अरमान, शमा प्रवीण, आफिया, तस्नीम और अलीशा ने। आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। एक और पत्र है, ये हमारे श्रोता है नाज मंजिल मैसोल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन, इशरक अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान हमजा, मुजम्मिल, हुमैरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, शाहिन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख और चिना शेख। कोकिलवारा उराई जिला मुजफ्फरपुर से हैं फैशल शेख, नुजहत जहां नाज, सेख टोली समस्तीपुर से हैं शहनवाज परवेज और मुसरत जहां नाज। इन सभी ने लिखा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें, तो चलिए हम आपको भी सुनवा रहे हैं प्रेम कहानी फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

प्रेम कहानी फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे। और श्रोता आइए सुनते हैं गाइड फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। इसी गीत को सुनवा रहे हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा के श्रोताओं को, जिन्होंने लिखा है एनी सॉन्ग। तो आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली, फलना झा, नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला को सुनवा रहे हैं गाइड फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं आइए सुनते हैं गाइड फिल्म का ये गीत। आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और अब अगला गीत आइए सुनते हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म से, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में ये प्यारा गीत। और इस गीत को हम सुनवा रहे हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा के श्रोताओं को, जिन्होंने लिखा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें। तो आप हैं कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नित्तू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और ढोली सगरा से जयंत कुमार बैरागी। और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम कोना जिला रोहतास से धनजी प्रसाद चौरसिया, गंगा सागर चौरसिया, सोनू कुमार चौरसिया, पिंकू कुमार चौरसिया और भरत चौरसिया, कन्हैया कुमार साथ में हैं। और इनके परिवार के सभी सदस्य, इन्होंने लिखा है कि मेरे पत्र को शामिल करें और कोई भी गाना सुना दें। तो चलिए हम आपको भी सुनवा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं इस फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, दिल है कि मानता नहीं इस फिल्म के खूबसूरत गीत के साथ ही पसंद आपकी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आइए चलते हैं आपको लेकर प्रादेशिक समाचार के लिए आकाशवाणी के पटना केंद्र।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि DBT के माध्यम से भेजेंगे। प्रदेश में आपसी समझौते के आधार पर सुलझने वाले ट्रैफिक चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। और चीन में चल रही एशियाई U23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोतिहारी के सेतु मिश्रा ने 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले का स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1,423 करोड़ रुपए की राशि को DBT के माध्यम से भेजेंगे। 6 योजनाओं के प्रत्येक लाभुक को 1,100 रुपए का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज

0: कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता मौजूद रहेंगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन भुगतान करना सुनिश्चित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में आपसी समझौते के आधार पर सुलझने वाले ट्रैफिक चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में भारी पैमाने पर लंबित ट्रैफिक चालानों के मद्देनजर ये व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिला परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोगों से फर्जी ट्रैफिक चालान से सावधान रहने की अपील की है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक इकाई के अनुसार SMS या WhatsApp के माध्यम से मिलने वाले ट्रैफिक चालान के लंबित रहने के संदेशों को आधिकारिक पोर्टल echalan.parivahan.gov.in पर सत्यापित करें। PIB ने कहा है कि फर्जी संदेशों के जरिए पहुंचे लिंक पर क्लिक करने से साइबर ठगों द्वारा OTP चोरी किया जा सकता है या बैंक खाते या UPI से अनधिकृत लेन देन हो सकता है। PIB ने लोगों को ऐसे लिंक नहीं खोलने की सलाह दी है। परिवहन विभाग राज्य भर के निजी स्कूली वाहनों का लेखा जोखा रखने के लिए इसी महीने एक पोर्टल लॉन्च करेगा। विभाग के सचिव राजकुमार ने बताया कि इस पोर्टल पर सभी स्कूल अपना पंजीयन कराएंगे। पोर्टल पर वाहन और उसके चालकों का पूरा विवरण भी दर्ज होगा। पोर्टल के माध्यम से वाहनों के फिटनेस और बीमा पर भी नजर रखी जाएगी। सचिव ने कहा कि स्कूली वाहनों को लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में सभी यातायात पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना और साथ ही सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने व्यापक जैव ईंधन नीति का बचाव करते हुए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को होने वाले नुकसान और वाहन के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। यह समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमिट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं को प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति डॉ CP राधाकृष्ण 2 दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रहे हैं। वे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले 11

0: और 12 जुलाई को गया जी में विधायकों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय लोकसभा के प्राइड और बिपार्ड के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नदियों में कटाव निरोधक कार्य को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक में तटबंधों की नियमित और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने और वरीय अधिकारियों को लगातार स्थल निरीक्षण करने को भी कहा है। श्री चौधरी ने संवेदनशील स्थानों पर बाढ़ निरोधी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक सामग्री के भंडारण के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार बाढ़ से पूर्व सटीक, समयबद्ध और विश्वसनीय सूचना आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई स्तरों पर पहल कर रही है। इस संबंध में बिहार मौसम सेवा केंद्र, भारतीय मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बाढ़ संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली को अधिक प्रभावी, समन्वित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि राज्य में बाढ़ से एक भी जान नहीं जाने देने के संकल्प के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्ययोजना तैयार की जाएगी। साथ ही राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र SEOC के माध्यम से एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कटिहार, बांका, भागलपुर और खगड़िया समेत दक्षिण पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की आशंका है। इस दौरान राज्य के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
1: राज्य के उत्तरी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। दक्षिणी भाग कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनी को आज मशहद शहर में इमाम रजा की दरगाह पर सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम यात्रा और जनाजे की नमाज में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार भारी भीड़ के कारण ताबूत को हवाई मार्ग से दरगाह तक पहुंचाया गया। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्घरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के सभी 84 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आज से प्रत्येक महीने के आखिरी शनिवार को शक्ति संवाद आयोजित किया जाएगा।

जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे शारदा पाठशाला कहलगांव में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर अन्य विद्यालयों में महिला पदाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर छात्राओं से सीधा संवाद करेंगी। इस दौरान वे छात्राओं को जीवन कौशल, अधिकारों और भविष्य निर्माण से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन देंगी। प्रदेश के सेतु मिश्रा ने चीन के ओरदोस में चल रही पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले का स्वर्ण पदक जीत लिया है। मोतिहारी के सेतु मिश्रा के अलावा आस्तिक प्रसाद और दो महिला धावक सांद्रमोल साबू तथा श्रावणी सचिन सांगले की चौकड़ी ने दौड़ 3:18 और 64 नैनो सेकेंड में पूरी की। सेतु मिश्रा 400 मीटर पुरुष दौड़ में भी भाग लेंगे। इधर प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में प्रदेश के ही विभास्कर कुमार हीट में चौथे स्थान पर रहे। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतियोगिता में

0: सेकेंड और 64 नैनो सेकेंड में पूरी की। सेतु मिश्रा 400 मीटर पुरुष दौड़ में भी भाग लेंगे। इधर प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में प्रदेश के ही विभास्कर कुमार हीट में चौथे स्थान पर रहे। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने पर सेतु मिश्रा को बधाई दी है। ब्रिस्टल में मेजबान इंग्लैंड के साथ चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल रात भारत को 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बनाकर 5 मैचों की श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। T20 श्रृंखला में यह भारतीय टीम की लगातार दूसरी हार है। दोनों टीमें कल साउथहैम्पटन में श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच खेलेंगी। इसके बाद भारत 14 जुलाई से इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेलेगा। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर चलाई जा रही 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इनमें पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन, बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन स्पेशल और दानापुर आनंद विहार स्पेशल समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनेंगे, खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित होगा। दैनिक जागरण ने रेलवे बोर्ड से जुड़ी खबर पर लिखा है, रेलवे में अनुकंपा पर नियुक्त आश्रित भी OPS के हकदार। दैनिक भास्कर ने EOU की कार्रवाई पर लिखा है, उत्पाद निरीक्षक ने 21 साल की नौकरी में 2,36,00,000 की अवैध संपत्ति बनाई। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लिखा है, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदेगा भारत, 1100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य। राष्ट्रीय सागर लिखता है, टेंडर घोटाला में ऋषुश्री की याचिका खारिज। आज अखबार की सुर्खी है, पटना स्थित ANSINHA इंस्टीट्यूट बनेगा विश्वविद्यालय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि DBT के माध्यम से भेजेंगे। प्रदेश में आपसी समझौते के आधार पर सुलझने वाले ट्रैफिक चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। और चीन में चल रही एशियाई U23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोतिहारी के सेतु मिश्रा ने 4x400 मीटर मिक्स रिले का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
3: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे देते हैं।

अब से थोड़ी ही देर बाद सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी नगमे। सुबह 9:30 पर हम चलेंगे विविध भारती के स्टूडियो और सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह 10:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे जो हमारे केंद्र से रिले होगा। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, जिसमें संकलन और स्वर होगा रजनीश कुमार श्रीवास्तव का और प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। सुबह 10:30 पर आप सुनिएगा लोक माधुरी में भोजपुरी एल्बम लोकगीत। सुबह 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार। दिन में 11:00 विविध भारती से आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग और दिन में 12:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन और शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे सखियों का मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन। इसमें बहनों से बातें होंगी साइबर अपराधों से कैसे रहे सुरक्षित, बढ़ते कदम नई मंजिल अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कार्यक्रम। गीत संगीत और चलते चलते में मन की मजबूती, इस पर भी बातें होंगी। कार्यक्रम में आज के सूत्रधार हैं सुनीता और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार। शाम 6:00 भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे और शाम 6:05 पर पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण होगा। शाम 6:10 पर गांव घर कार्यक्रम आप सुनेंगे ग्रामीण भाई बहनों का, जिसमें चर्चा सुनिएगा बढ़ती जनसंख्या घटते संसाधन विश्व जनसंख्या दिवस पर। लोकगीत भी आप सुनेंगे और वार्ता सुनिएगा जनसंख्या नियंत्रण वार्ताकार भूपेंद्र नारायण सिंह से। एक जानकारी में किसी को भी OTP न बताएं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार होंगे प्रवीण कुमार दुबे, प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। शाम 6:40 पर सांझ गीत में भोजपुरी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा और शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा जो हमारे केंद्र से रिले होगा। रात्रि 9:00 लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे और रात्रि 9:15 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम बंदगी। रात्रि 9:30 पर पटना से रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण होगा। रात्रि 10:00 रसरंग में हिंदी एल्बम सॉन्ग आप सुनेंगे और रात्रि 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आपको जानकारी मिलेगी। रात्रि 11:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर। सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी आज हमारे केंद्र से आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हो चुके हैं और श्रोताओं आइए सुनते हैं गीत मालिका कार्यक्रम में खूबसूरत फिल्मी नगमे।

दिल बेचारा इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और शासा तिरुपति की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत था और A.R. रहमान का संगीत था। अगला गीत ये सुनते हैं दिल का रिश्ता फिल्म से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत।

दिल का रिश्ता फिल्म का ये खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के बोल थे और नदीम श्रवण का संगीत था। अब आइए सुनते हैं अगला गीत, दिल है तुम्हारा फिल्म का खूबसूरत गीत कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

श्रोताओं सुन रहे थे ये गीत हम दिल है तुम्हारा फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाज़ों में। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म से।

और श्रोताओं, दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म के खूबसूरत गीत के साथ ही गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुनाया करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: स्पेशल प्रोग्राम आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर।
1: वो जब याद आए

0: जब याद आए, बहुत याद आए।
1: असद भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर

विरासत भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया, ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे SF हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नजर पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाय खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की

कमी नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज़ फाजली ब्रदर्स को पसंद आई, भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और SF हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ ये

0: नबी।
1: फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुनवा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

1950-51 के आसपास बी.आर. चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित होसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शेवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे, करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित हुसन लाल, पंडित भगत राम, सी रामचंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिव राम, श्याम सुंदर, एन दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं, वो जब याद आए, बहुत याद आए, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई, मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई न आ सके।

0: 9 जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।
1: जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, दो गज

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई।

0: में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी किया। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा के दोनों सदनों के समक्ष एक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के लिए उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करी। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रिफाइंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, संकलन और स्वर रजनीश कुमार श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रजनीश श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम सबसे पहले सुनेंगे सप्ताह भर की खेल गतिविधियों पर आधारित खबरें और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे आज के खेल में बॉक्सिंग के कोच नरेंद्र कुमार के पास। तो आइए शुरू करते हैं सप्ताह भर की।

खेल गतिविधियों की सुर्खियों से, अर्जेंटीना की जीत के बाद मैच फिक्सिंग जैसे सनसनीखेज आरोपों से भूचाल। मिश्र के कोच हसन ने कहा, हमसे धोखा हुआ। मिश्र का वीएआर और रेफरी को रेड कार्ड। फीफा अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। स्विट्जरलैंड 72 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। सीरीज के साथ टीम इंडिया की साख दांव पर। ग्रास कोर्ट के बादशाह नोवाक ने जीता सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल। खेलो इंडिया की मेजबानी करेगा तेलंगाना। भारतीय महिला मुक्केबाजों के 9 पदक पक्के। आइए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। सीरीज के साथ टीम इंडिया की साख दांव पर। अपनी सबसे बड़ी हार और दूसरे सबसे कम स्कोर पर आउट होने के बाद टीम इंडिया की साख दांव पर है। विश्व चैंपियन को अगर पिछले 7 साल में पहली बार लगातार 2 सीरीज हारने से बचना है तो गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 में जीतना होगा। इसके लिए उसके बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाना होगा। भारतीय टीम इंग्लैंड के मुश्किल हालात में ढलने के लिए संघर्ष कर रही है। टीम यह मैच हार गई तो 2018-19 के बाद पहली बार लगातार 2 सीरीज भी गंवा देगी। तीसरे मैच में टीम 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 76 रन पर लुढ़क गई थी। सिर्फ 3 बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंचे और टीम को 125 रन की शर्मनाक हार मिली। फीफा अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के खिलाफ यूरोपीय संसद में जांच की मांग तेज हो गई है। अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन का लाल कार्ड निलंबन हटाए जाने के मामले में यूरोपीय सांसदों ने इन्फेंटिनो की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में जांच शुरू करने के लिए तैयार किए गए पत्र पर अब तक 35 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यूरोपीय सांसद बैरी एंड्रयूज, लारा वाल्टर्स और नील फुल्सोंग ने संयुक्त बयान में कहा कि टूर्नामेंट के बीच लाल कार्ड निलंबन के नियम में बदलाव करना शर्मनाक और घोर अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि फीफा ने ट्रंप प्रशासन के दबाव के आगे झुककर फैसला लिया। सांसदों ने यूरोपीय देशों के फुटबॉल संघों से फीफा आचार समिति के इन्फेंटिनो की जांच कराने की अपील की है। उनका कहना है कि यह पता लगाया जाए क्या बालोगुन का निलंबन हटाने में अमेरिकी प्रशासन का कोई दबाव था। साथ ही उन्होंने ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार देने जैसे अन्य फैसलों की भी समीक्षा की मांग की है। फीफा ने सफाई देते हुए कहा है कि बालोगुन का निलंबन हटाने का फैसला अनुशासनात्मक समिति का था। गौरतलब है कि 1 जुलाई को बोस्निया हर्जेगोवीना के खिलाफ मुकाबले में बालोगुन को लाल कार्ड मिला था। नियमों के अनुसार उन्हें अगले मैच से बाहर रहना था, लेकिन ट्रंप के इन्फेंटिनो से संपर्क के बाद फीफा ने उनके 1 मैच का निलंबन हटा दिया जिससे वह बेल्जियम के खिलाफ खेल सके। स्विट्जरलैंड 72 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। पूरे 72 साल का लंबा इंतजार, मैदान पर कोलंबियाई प्रशंसकों का पीला समंदर और चोटिल खिलाड़ियों के चलते बैकफुट पर खड़ी टीम। लेकिन इतिहास तभी बनता है जब इरादे फौलादी हों। स्टार खिलाड़ी रूबेन वार्गास के निर्णायक पेनाल्टी स्ट्रोक की बदौलत स्विट्जरलैंड ने मंगलवार को फीफा विश्व कप 2026 में इतिहास रच दिया। निर्धारित और अतिरिक्त समय तक चले गोल रहित 0-0 मुकाबले के बाद स्विस टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से शिकस्त देकर साल 1954 के बाद पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिया। भारतीय महिला मुक्केबाजों के 9 पदक पक्के। भारतीय अंडर-20 महिला मुक्केबाजी ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्के कर लिए हैं। खेलो इंडिया की मेजबानी करेगा तेलंगाना। खेल मंत्री मनसुख मंडावलिया ने बुधवार को घोषणा कर कहा कि तेलंगाना खेलो इंडिया युवा खेलों के 2026 चरण की मेजबानी करेगा। KIUG के नवंबर में होने की संभावना है। मई 2025 में बिहार ने पिछले चरण की मेजबानी की थी। खेल मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के सभी हिस्सों में बड़े राष्ट्रीय आयोजन करने की सोच को ध्यान में रखते हुए यही उचित है कि तेलंगाना को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी का मौका मिले। नोवाक जोकोविच ने कहा कि ये वो पल है जिसके लिए मैं आज भी टेनिस खेलता हूँ। मैं अब भी उन युवा खिलाड़ियों से मुकाबला करने में सक्षम हूँ जो मुझसे 15 साल छोटे हैं। मैं उन्हें बेहद कभी भी मुकाबले में हरा सकता हूँ। काश यह फाइनल होता ताकि मुझे यह चिंता न करनी पड़ती कि कल मेरा शरीर कैसा महसूस करेगा। 55वीं बार

0: किसी ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना सर्वकालिक रिकॉर्ड और मजबूत किया। फेडरर 46 बार दूसरे स्थान पर हैं। 39 साल और 38 दिन की उम्र में विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। रिकॉर्ड वसेवाल 39 साल 214 दिनों के नाम है। तो दोस्तों, यह थी खेल गतिविधियों पर आधारित हमारी साप्ताहिक खबरें। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं बॉक्सिंग के कोच नरेंद्र कुमार के पास। बॉक्सिंग में हमारा देश बहुत आगे जा चुका है, आने वाले समय में और भी आगे जाने की पूरी उम्मीद है। और ऐसा लगता है कि एक समय आएगा जब दुनिया के इस मंच पे हम हर स्पोर्ट्स में छाएंगे। तो बॉक्सिंग में अभी अभी जो इवेंट्स हुए हैं और बॉक्सिंग की वर्तमान में क्या स्थिति है, इसकी विशेष जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं शारीरिक शिक्षक एवं बॉक्सिंग कोच नरेंद्र कुमार सिंह के पास, और उनसे हम जानेंगे बॉक्सिंग के बारे में और अभी हाल फिलहाल हुए इवेंट्स के बारे में। नरेंद्र जी, आकाशवाणी सासा हम आपका हार्दिक स्वागत करता है।
1: धन्यवाद सर, और आपके श्रोताओं लोग को भी मेरा बहुत बड़ा प्रणाम है।
0: नरेंद्र जी, अभी कुछ इवेंट्स हुए हैं, सबसे पहले उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, अभी हमारा रिसेंटली 5वां अंडर 15 बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, जो कि जलंधर के LPU यूनिवर्सिटी में, जिसमें बिहार की पूरी टीम गई थी बॉयज एंड गर्ल्स की, जिसमें 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज अपने बिहार के नाम हुआ।
0: बहुत बहुत बधाई हो आपको, बिहार इसमें भी आगे की ओर जा रहा है। ये जो इवेंट्स हुआ इसमें आप वहाँ मौजूद थे, और मौजूद थे तो आपके क्या काम थे वहाँ?
1: जी, मैं यहाँ बिहार से बॉक्सिंग कोच के रूप में गया था, बॉयज ग्रुप के बॉक्सिंग कोच में मेरा नाम था, और मैं वहाँ गया तो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम चल रहे थे जजेस के, हमारा जो रेफरी जज का नेशनल का एग्ज़ाम होता है Star 1, Star 2, Star 3, तो हमने बहुत पहले सिंपल नेशनल जी कर लिया था, तो ग्रेड के लिए मैंने भी इस बार एग्ज़ाम दिया, तो मेरा एग्ज़ाम भी चला वहाँ पे और मैं एज ए कोच भी वहाँ मौजूद रहा।
0: बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बहुत कम लोगों को इतना बड़ा मौका मिलता है।
1: जी सर, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक कोच बन के जाना किसी स्टेट का, और उसमें भी मेडल लग जाए तो और भी अच्छा लगता है।
0: क्योंकि हम ले तो जाते हैं बहुत बार कोच बन करके, लेकिन कभी कभी निराशा हाथ लगती है कि कुछ भी जब हमें नहीं मिलता है, और जब मिलता है तो फिर क्या कहने हैं उसके।
1: सही बात है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनका खाता भी नहीं खुल पाता, वो ब्रॉन्ज तक भी नहीं पहुँचे, इवन क्वार्टर तक भी नहीं पहुँच पाते हैं, और अब आज बिहार 4 मेडल लेकर के वापस आया है, तो काफ़ी खुशी और हर्ष की बात है।
0: नरेंद्र जी, एक व्यक्तिगत क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। एक समय आप प्लेयर थे और एक समय आप कोच हैं, टीम लेके जा रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में?
1: देखिए, जैसे हम लोग खेलने जाते हैं तो उस समय भी हमें वही खुशी होता है कि भाई हम अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, और बहुत काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद लगता है कि मेडल आ जाए, अगर नहीं लगता है मेडल तो बहुत बड़ी निराशा होती है, लेकिन वो निराशा अगर हम लगे रहें कंटिन्यू अपने जीवन में, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन बीच में अगर हम प्रैक्टिस शुरू कराते हैं और बच्चे हमारे उस मुकाम तक पहुँच जाते हैं, तो उससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती है कि हमने सिर्फ नेशनल खेला और हमारे बच्चे, हमारे सिखाए हुए बच्चे आज के डेट में नेशनल में पदक जीत के आते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम एक खिलाड़ी होते हैं तो सिर्फ व्यक्तिगत हमारी जिम्मेवारी होती है, लेकिन जब हम एक कोच बन के जाते हैं तो सबकी जिम्मेवारी हमारी होती है, और सबकी जीत हमारी जीत, सबकी हार हमारी हार होती है।
1: सही बात है सर, सबसे ज़्यादा बच्चे तो एफर्ट लगाएंगे, लेकिन कोच का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चे को सुरक्षित ले जाना, सुरक्षित गेम में इवेंट में शामिल करना, और वापस अच्छे से आ जाना, उसमें भी मेडल लगे तो और भी अच्छी बात है। कोशिश हमारा हमेशा रहता है कि बच्चे अच्छा खेल लें, अपना 100% दें और अच्छे मुकाम तक पहुँचे और एक अच्छा लक्ष्य तक प्राप्त करें।
0: नरेंद्र जी, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि बॉक्सिंग में हमारे देश की स्थिति क्या है, कौन कौन से बड़े बॉक्सर हुए हमारे देश से जिन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया।
1: जी सर, पहले से ही बॉक्सिंग क्या है, अगर हम अगर हिस्ट्री पढ़ा जाए तो 776 BC पहले से स्टार्ट है बॉक्सिंग। इसमें क्या बोलते हैं कि ओलंपिक में भी बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, पहले से मेडल बहुत कम आता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है इम्प्रूवमेंट है। पहले हमारा विजेंद्र सिंह है जो पंजाब के रहने वाले हैं, वो उनका भी मेडल है, एशियन में भी है, ओलंपिक्स में भी है। अभी महिलाओं में देखा जाए तो मैरी कॉम भी अच्छा खेली हैं, मेडल भी दी हैं। अभी रिसेंटली जो बॉक्सर्स हैं, स्वीटी बोरा हैं, पूजा कुमारी है, निखत जरीन है, जासमीन है, लड़कियों का भी दबदबा थोड़ा बढ़िया है। अभी तुरंत देखा जाए तो हाल के इंटरनेशनल मैचों में या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में विश्वनाथन है, अभी नया बच्चा है, अभी ये सब उभर के आगे आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जो मतलब सब जूनियर जूनियर से ट्रेंड होके जाते हैं, तो सीनियर में कहीं ना कहीं निखर के आते हैं, और वो मेडल के लिए वहाँ पर अगर देश का

0: अगर लाते हैं तो देश का नाम पूरा हमारा वर्ल्ड में विश्व में छा जाता है।
1: बॉक्सिंग एक रिस्क वाला भी गेम है, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: जी सर, ये तो कॉम्बैट है, मारपीट जो भी हम लोग कह लेते हैं कि भाई मुक्केबाजी कर देना आसान नहीं होता। अगर एक मुक्का किसी को लग जाए ना कांटेक्ट हमारे फेस पे, जो हमारा टारगेट एरिया होता है, ब्लो द बेल्ट नहीं मारना होता, मतलब हमारा जो एक किट होता है बॉक्सिंग का, तो उसमें एक वाइट पट्टा होता है सेंटर पे पेट के पास, उससे ऊपर से लेके हेड तक, तो उसमें जो टारगेट एरिया हमारा आता है, उस टारगेट एरिया पर जब पंच कहीं लग जाता है, अगर या तो फाउल भी कहीं लग गया, अगर टारगेट से बाहर लगता है कहीं और एरिया में, तो पंच लगने के बाद आदमी लगता है कि 10 से 15 सेकंड के लिए अनकॉन्शियस होने लगता है। अगर उसके आगे भी अगर किसी ने बर्दाश्त कर लिया तो बॉक्सिंग में वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ ही जाता है।
1: और अभी बॉक्सिंग चूंकि इतना खतरनाक है, तो अभी मैंने सुना है कि इसमें बहुत सारे सेफ्टी का इंतजाम किया गया है, किस किस तरह की सेफ्टी दी जाती है उनको?
0: जी सर, पहले से क्या था कि पहले, अभी भी क्या है, सब जूनियर यूथ और तक क्या है कि हम लोग हेड गार्ड यूज करते हैं। हेड गार्ड होने से क्या होता है कि हमारा जो फेस है वो हमारे जो हेड है वो सेफ होते हैं। और जो हमारा अभी ओलंपिक्स जो पिछला हुआ, इसमें क्या हुआ कि देखा गया कि भाई पंच में जो हमारा स्पीड होता है या पावर होता है, तो उससे क्या होता था, बच्चे नॉकआउट हो जाते थे बहुत ज़्यादा। तो उसमें भी अब कोशिश किया गया है कि जो थिकनेस है हमारे ग्लव्स के, उसको थोड़ा सा और बढ़ाया गया है ताकि पंच से बच्चे नॉकआउट डायरेक्टली ना हो, थोड़ा देर बर्दाश्त कर सके। चोट तो लगता ही लगता है, लेकिन उस चोट को थोड़े कम करने के लिए थिकनेस को बढ़ा दिया गया है। पाउंड्स हमारे वही हैं, ऑन्स हमारे वही हैं, बस उसके थिकनेस को थोड़ा बढ़ाया गया, स्पंजिंग किया गया है ताकि चोट तो लगे लेकिन ज़्यादा खतरा ना हो, इंजुरी ना हो, इसको सेफ्टी में रखने के लिए किया गया है।
1: यानी कि अब हम जो पहले बहुत बड़ा रिस्क होता था, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं होते थे और डायरेक्ट मतलब ऐसी स्थिति आती है कि उसमें मौत तक निश्चित थी, अब वैसा खतरा नहीं है।
0: जी बिल्कुल, हर कुछ सेफ्टी के अकॉर्डिंग अब किया जा रहा है। बॉक्सिंग में भी जैसे हमने बताया डायरेक्ट नकल हिट होता है, तो नकल हिट होता है बहुत ज़्यादा स्पीड और बहुत ज़्यादा चोट भी लगता है, तो उसमें हम लोग थिकनेस जब हमने बताया तो उसकी वजह से क्या होता है कि चोट अब कम हो गया है। और अभी भी बहुत सारे जो स्किल्स हैं बच्चों को, डायरेक्टली हम लोग बाउट में नहीं ले जाते, फाइट में नहीं ले जाते, पहले स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। स्किल में क्या होता है, बच्चे पैरी करना जान जाते हैं, तो जो पंच जहाँ लगने वाला होता है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ही जाके वहाँ पे अपने आप को बचाव करने के लिए, डिफेंस करने के लिए कोशिश करते हैं। डिफेंस हो जाता है तो हमारे पंच का जो स्पीड है, मूवमेंट है, वो थोड़े स्लो हो जाता है, लगता भी है तो उतना हिट नहीं लगता है।
1: नंद जी, आपसे बातें करने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा आपका भी मनोरंजन हो जाए, उबाऊ नहीं हो, और हमारे श्रोताओं का भी हो जाए। तो गाना सुनना पसंद करते हैं आप?
0: जी बिल्कुल,
1: मैं चाहता हूं कि आप अपनी पसंद का गाना आप बताएं ताकि मैं आपको भी सुनाऊं और अपने श्रोताओं को भी सुनाऊं।
0: हम चाहेंगे कि एक गाना मेरे हिसाब से बजे, दिल का है दिल, दिल का एतबार क्या ही चीज़ है।
1: चलिए, तो मैं आपकी पसंद का गाना दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आपको भी सुनाता हूं और अपने श्रोताओं को भी सुनाता हूं।

0: नयन जी, मैंने आपकी पसंद का गाना आपको भी सुना दिया और अपने श्रोताओं को भी। अब बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि वो जो चार बच्चे हमारे अभी गए थे उनका नाम और वो कहाँ से खेले, इनके बारे में आप हमें बताएं।
1: जी, गर्ल्स में हमारे दो मेडल आए जिसमें एक नित्या पांडे हैं, वो पटना से हैं, और दूसरी प्रगति कुमारी है, वो मुजफ्फरपुर से हैं। दोनों ने गोल्ड लाया गर्ल्स ने, और दो बॉयज हैं जो हमारे ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। एक है बीर कुमार, वो हैं कटिहार से, और एक है लकी कुमार, तो ये है भागलपुर से।
0: नवीन जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सालों से मैं आपको इस क्षेत्र में देख रहा हूँ, पहले भी आपसे काफ़ी बातें हुई हैं, तो अभी रोहतास की पहले और आज तक के कुछ हमारे बॉक्सर्स का नाम बताएं जो नेशनल तक पहुंचे हैं या स्टेट खेले हों।
1: बहुत ऐसे बॉक्सर्स हैं हमारे रोहतास में, सुजीत मिश्रा हैं, अमित कुमार सिंह है, अमित कुमार है, नीरज कुमार है, हर्षराज आनंद है। लड़कियों में देखा जाए तो श्रद्धा कुमारी है, खुशबू कुमारी है, ये भी लड़कियां आगे नेशनल तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी हैं।
0: जब बच्चे आपके पास आते हैं कि सर मैं बॉक्सिंग सीखूंगा या सीखूंगी, तो आप उन बच्चों में क्या देखना चाहते हैं सबसे पहले?
1: देखिए, हमारा गेम क्या है, कॉम्बैक्ट है, युद्ध कला है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, धैर्य। क्योंकि देखिए, जो भी लोग क्या होता है, थोड़े से लड़ाई झगड़ा होने के बाद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो यहाँ एग्रेसिव अगर हो गए कोई भी गेम में, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हमारे कम्बैक्ट में ही या फिर मार्शल आर्ट में ही ऐसा कुछ है, इसमें धैर्य सबसे बड़ा चीज़ है। कोई भी गेम में धैर्य होना जरूरी है, क्योंकि अगर तुरंत ही अगर रिसेंटली अगर वो चोट लगे, अगर उसके बाद हम थोड़ा धैर्य को तोड़ दे, ज़्यादा वो सोचने लगे या मार दिया तो हमें भी मारना है, तो शायद मैं नहीं मार पाऊँ या फिर कोई नहीं मार पाए। क्योंकि इसमें धैर्य को रखेंगे, हमारे एनर्जी को बरकरार रखेंगे हम धीरे धीरे। क्या है ये रणनीति है, गेम में कोई भी गेम हो रणनीति तैयार करते हैं हम लोग कि अगला अगर वो पंच ऐसे मार रहा है तो हम उसका ब्लॉक कैसे लें, या फिर वैसे हमारा डिफेंस क्या होना चाहिए, अटैकिंग हमारा क्या होना चाहिए, तो इस पर हम लोग रणनीति बनाते हैं। हमारा जो फुटवर्क होता है, शैडो होता है, हमारा खुद का कॉम्बो होता है, उस पर प्लान करके उस पर वर्क करते हैं, तब हम जा करके एक अच्छा बॉक्सर बन पाते हैं।
0: इसका मतलब कि आप उसको मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा कराते हो कि उसके ध्यान केंद्रित हो, टारगेट उसके सामने।
1: जी जी बिल्कुल, हम लोग जब तक, मैंने पहले भी बताया कि धैर्य जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग मेडिटेशन करेंगे, दिमाग को एकाग्र करेंगे, तभी जा करके हम उस जगह तक पहुंच पाते हैं जहां हमें एक अच्छा बॉक्सर्स के रूप में पाना होता है।
0: कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे खेलने के लिए आते हैं पर वो पहले ही पंच के बाद अगर उनको लग जाता है तो वो डर जाते हैं, उनको कैसे आप ठीक करते हैं?
1: जी, ऐसा बहुत बार होता है, बच्चे तो आ जाते हैं कि भाई मैं बॉक्सिंग खेलूँगा, बस ये होता है कहीं मैच वगैरह देख लिया, जुनून आ गया, भाई आज मैं बॉक्सिंग का मैच देखा, अच्छा लगा, मैं खेलने जाऊँगा। लेकिन जब वो बच्चे रियल लाइफ में बॉक्सिंग खेलने आते हैं

0: बाई मिस्टेक या फिर ऐसे गेम में तो चोट लगना है, लगने के बाद उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत तगड़ा गेम है और बहुत खतरनाक गेम है, तो कुछ बच्चे डरने भी लगते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बेटा ये चीज़ अगर आपने पहले सोच लिया और डर गए तो आगे नहीं बढ़ोगे, इसको रियलाइज करो। अगर ये पंच का स्पीड ये है, लगता है लगने दो। लगने के बाद क्या होता है, एक स्तर तक ही हमें पंच लगता है। अगर हमारा वेट होता है ना, हमारा वेट जो होता है बॉक्सिंग में जूनियर सब जूनियर में 2-2 किलो 2.5 किलो 3 किलो तक के अंतर आते हैं, सीनियर में वही जाके वेट 5 किलो के अंतर आते हैं, तो वो ही हमारा डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि 15 किलो 20 किलो का डिफरेंस होगा तो बहुत ज़्यादा नॉकआउट होने का संभावना होता है, तो हम उसी सिस्टम में खेलते हैं। तो वो बच्चों को जब पता हो जाता है कि हमारा पंच का स्पीड क्या होगा, हमारा पावर क्या होगा, तो उन बच्चों को उतना रियलाइज हो जाता है कि ये पंच जो लगा मेरे को हिट पंच लगा और इससे ज़्यादा हिट पंच नहीं हो सकता है, मैं इतना बर्दाश्त कर लिया, मीन्स मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो उनके अंदर भी मोटिवेशन आने लगता है कि मैं अब धीरे धीरे आने लगा हूँ उस फॉर्म में, मैं खेलने लगूंगा, मैं जीतने लगूंगा, ये सब होता है।
1: अच्छा, इसमें एक चीज़ है सबसे बड़ी कि शारीरिक मजबूती, मतलब बॉडी से लेके ये, उसके लिए आप बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं?
0: जी, इसमें बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी सबकी ज़रूरत पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एक्सरसाइज, अपना शेड्यूल तैयार करते हैं। जो हमारा 6 दिन का जो वीक में शेड्यूल होता है वो ऐसे इसी आधार पे होता है कि किसी दिन फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, किसी दिन स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, बॉडी को डेवलप करते हैं। तब हमारा बॉडी डेवलप हो जाता है तो उस जगह पे जो हमारा टारगेट एरिया है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। हिट मारने के पे उतना जोर, अगर हिट लगता भी है तो हमें असर नहीं पड़ता है।
1: नरेंद्र जी, बॉक्सिंग की जो ताकत होती है, जैसे एक पंच मैंने मारा, क्या उसका भी कुछ ये है, आप उसको मापते हैं किसी तरीके से?
0: जी बिल्कुल, कहा जाता है कि बॉक्सिंग में एक पंच, जैसे सिंगल पंच इज ए स्पोर्ट डेथ, तो उतना तगड़ा पंच अगर आपका होता है, लगता भी है एक पंच से आदमी मर भी सकता है, तो पावरफुल पंच तो सबके होते हैं। और हम लोग जैसे हैवी वेट से कोई भी चीज़, जैसे हमने बताया थिकनेस के बारे में पंचेस के या फिर ग्लव्स के, तो वो भी हैवी वेट के जो बॉक्सर होते हैं उनके पंच को मार करके उनका जो स्पीड या फिर उनका प्रेशर, दबाव, ये चेक किया जाता है कि कितना स्पीड में जा रहा है और इससे कितना हार्म हो सकता है, कितना इंजुरी कैजुअल्टी हो सकता है, तो वो स्पीड और उनके स्ट्रेंथ को मापा जाता है।
1: बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या कहें, समय की बहुत कमी है हम लोगों के पास, आप जानते ही हैं। अंत में आप हमारे बॉक्सिंग प्लेयर को क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने एक टारगेट बनाया कि मैं बॉक्सर ही बनूंगा?
0: जी, मैं कहना चाहूंगा जो बच्चे हार जाते हैं, हार के बाद निराशा मिलती है, वो लोग छोड़ देते हैं, टूटने लगते हैं या फिर बैक हो जाते हैं, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि कोशिश करना है, कोशिश नियंत्रण रखना है। आज हार गए तो क्या हुआ, आगे अपना भी आएगा, लेकिन समय के हिसाब से हम क्या करेंगे, अगर रेगुलरिटी लगा रखेंगे, अपने शेड्यूल को लेकर चलेंगे, हमारा जो सिस्टम है अपने बॉडी वर्क पर काम करेंगे, स्किल वर्क पर काम करेंगे, तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, और वो दिन भी आएगा जब हम उस लेवल में आ जाएंगे जब उनके साथ खेलना शुरू कर देंगे।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय में दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: ओके सर, धन्यवाद सर।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारे यह कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। तो फिर देखिए, इस बात की उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 8211115। संकलन एवं सर रजनीश श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 10:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोक गीत।

राजा पियाजानी एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे भरत शर्मा ब्यास की आवाज़ में। मोतीलाल मंजुल का लिखा ये गीत था, भरत शर्मा ब्यास का संगीत था। अब आइए सुनते हैं राम नाम लड्डू कशिश सिन्हा की आवाज़ में ये अगला गीत, गीत के बोल पारंपरिक और संगीत पंडित ज्वाला प्रसाद का।

आधी आधी रतिया के इस एल्बम से अभी आप सुन रहे थे ये भोजपुरी लोकगीत लोकमाधुरी कार्यक्रम में भर शर्मा ब्यास की आवाज़ में। पांडे नगीना का लिखा यह गीत था, भर शर्मा ब्यास का संगीत था और इसी के साथ लोकमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:45 हो चुके हैं और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार।

खुर्शी कक्कड़ और मोहन राठौर की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे विनय बिहारी का लिखा ये गीत, और मास्टर प्रिंस और रानू मलिक की आवाज़ों में ये दिया हुआ संगीत था, और बाड़ू भुलायल देवघर में ये सुन रहे थे हम लोग गीत। अब आइए सुनते हैं कांवड़िया के भी जुटल सुनील छैला बिहारी और शिवानी सिंह की आवाज़ों में। गीतकार हैं विनय बिहारी और संगीतकार हैं अजय सिंह।

सुगम सिंह की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। विनय बिहारी का लिखा, आशीष वर्मा का संगीत निर्देशन, शिवधाम जे आवेला। अब आइए सुनते हैं चला कंवरिया। निधि मिश्रा की आवाज़ में ये गीत है, विनय बिहारी के बोल और अमित गुप्ता का संगीत।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ रसधार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम अब आइए सुनते हैं, आकाशवाणी मुंबई से प्रसारित
1: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
2: रंग तरंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आपका कार्यक्रम रंग तरंग में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मीरा भजन इस एल्बम से। लता मंगेशकर की आवाज है, मीरा बाई का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।

0: और आइए अब सुनते हैं निदा फाजली का कलाम, स्वर चंदन दास का।
1: दर्द रुलाने वाला

0: चंदन दास की आवाज में अभी आपने निदा फाजली का ये कलाम सुना। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। और आइए अब सुनते हैं मिलिंद गदवी का लिखा गीत, इसे आवाज दी है हमशिका अय्यर ने।

हमशी का अय्यर की आवाज थी ये, और अभी आपने इनका गाया ये ओगार फिल्मी गीत सुना। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शोभा गोल्टू की आवाज में ये शास्त्रीय रचना।

0: शोभा गुल्टो की आवाज में अभी आपने ये शास्त्रीय रचना सुनी।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली की आवाज। इनका गाया ये अगार फिल्मी गीत सुनिए।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। यह आवाज है विशाल मिश्रा की और गीत और संगीत भी विशाल मिश्रा का ही है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
2: रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरफ।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको जिगर मुरादाबादी का ये कलाम सुनवा रहे हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और हरजोत कौर की आवाजों में है। गीतकार हैं अनजान और ये एक गैर फिल्मी गीत है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए पलक मुछाल और उत्कर्ष शर्मा की आवाजों में ये महफिल में गीत।

और आइए अब सुनते हैं रंग तरंग कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश। कलाकार हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन।

0: इस रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग,
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा का सबसे प्रभावशाली जनसंपर्क कार्यक्रम मेलबर्न के मावल स्टेडियम में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन रहा, जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 10 लाख भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया

0: लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत सेतु बताया।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज

0: मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
1: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज बढ़त का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 803 अंक बढ़कर 77,545 जबकि निफ्टी 243 अंक की बढ़त के साथ 24,205 पर पहुंच गया। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

कराए हैं दिग्गज गीतकार और शायर असद भोपाली के लिखे कुछ गीत। आपको याद है ना, आज उनका जन्मदिन है। तो आइए यादों की महफिल कार्यक्रम में आज असद भोपाली जी को हम याद करते हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। गीतकार असद भोपाली और संगीतकार राम लक्ष्मण।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। और आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपके लिए

लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। और आइए अब सुनते हैं उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में असद भोपाली की लिखी ये रचना, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है एक सपेरा एक लुटेरा।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए असद भोपाली का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है हम सब उस्ताद हैं।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था हम सब उस्ताद हैं।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर और कमल बारूद की आवाजें। फिल्म का नाम है पारस मणि। असद भोपाली के शब्दों को संगीत में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म रूप तेरा मस्ताना का गीत सुनवा रहे हैं। शब्द असद भोपाली के और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की ही आवाज में, फिल्म का नाम श्रीमान फंटूश, रचना असद भोपाली की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म टावर हाउस का गीत सुनवा रहे हैं, रचना असित भोपाली की और संगीत रवि का।

कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा हुआ, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है आया तूफान।

0: है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म नाग मंदिर का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए।

0: सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म एक नारी दो रूप का ये गीत।

ग्यावस थी मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम था एक नारी दो रूप। गीतकार थे असद भोपाली। और आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको गीतकार असद भोपाली के लिखे कुछ गीत सुनवाए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। बस आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

नट्टो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, निदा फाजली ने कहा है कि सफर में धूप तो

होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो चलिए निकलते हैं इस आज के सुरीले सफर पर, या यूं कहें कि इस संगीतमय सफर पर। और आज इस सफर में कुछ कालजयी और सदाबहार धुनों पर आधारित कई ऐसे गीत हम आपके लिए चुनकर लाए हैं जो आपको लगभग एक जैसे गाए हुए लगेंगे, है ना। यानी एक ही मीटर में गाए हुए ये गीत हम कई बार सुनकर ठिठक

आपके लिए चुनकर लाए हैं जो आपको लगभग एक जैसे गाए हुए लगेंगे, है ना। यानी एक ही मीटर में गाए हुए ये गीत हम कई बार सुनकर ठिठक भी जाते हैं या महसूस करने लगते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल एक जैसा ही गाया गया है। यहाँ शास्त्रीय रागों पर बात करना हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि कौन सा गीत पूर्ण रूप से किस राग पर आधारित है ये तो कोई शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता ही बता सकता है। लेकिन हाँ, जब हम इन गीतों पर अध्ययन कर रहे थे तो हमने जाना कि आज के ये सभी गीत एक ही राग पर आधारित हैं और सुनने में बिल्कुल लगभग यूं कहें एक जैसे लगते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के इस सुरीले सफर पर। हाँ, हमारे बहुत से श्रोताओं ने कभी लिखा है कि आज के गीत राग यमन पर आधारित हैं, राग आसावरी पर, राग शिवरंजनी पर, राग अल्लैया बिलावर पर, राग पीलू पर। बहुत सारे रागों का हमारे श्रोताओं ने जिक्र किया है, लेकिन हमने आपको कहा कि यहाँ राग इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हम शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं हैं। हमारा उद्देश्य इस रूप में आपका मनोरंजन करना है कि ये गीत जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये गीत उस गीत से कितना मेल खाता हुआ है। ये अलग बात है कि ये गीत किसी एक राग पर आधारित हैं, कोशिश तो हम करेंगे उसे जानने की। तो आज का हमारा टेक्स्ट है कि आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसे गाने जिसमें भाव या मूड एक जैसा है ऐसे गीत लेकर आए हैं, ऐसे गीत जो सुनने में एक जैसे लगेंगे। हाँ, और शास्त्रीय दृष्टि से भी वैसे उनका राग एक ही है, ऐसे गीत जो एक ही मधुर धुन से प्रेरित हैं आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस मधुर और सदाबहार राग पर कई बेहतरीन गीत बने हैं जो आपको बिल्कुल एक जैसा ही अनुभव करवाएंगे। इन सभी गानों को इस कार्यक्रम में एक मधुर माला की तरह पिरोया गया है। तो बताइए कौन से हैं वो गीत, और आज हमने एक बार फिर आपके लिए कुछ शब्द जोड़े हैं कि इन गानों में ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, ताकि आपको कुछ आसानी हो जाए उन गानों को ढूंढने की, है ना, उस राग को पहचानने की। अगर आप में से हमारे श्रोता जो शास्त्रीय रागों के ज्ञाता हैं, तो आज के शब्द हैं हवाएं, दिल, कहा था, तमन्ना, महका, जरूरत, नगमा, अगर, किनारे और मजबूर। और यकीनन हमारे श्रोता बहुत बहुत बहुत होशियार हैं, क्योंकि उन्होंने, बहुत सारे ऐसे श्रोताओं ने इस बात का जिक्र किया है कि भाई आज तो ये गाने ये हैं, सारे गाने सही लिख दिए हैं हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, और कई श्रोताओं ने इन्हें जानने की कोशिश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार अलग अलग फिल्मों के गीत सुनते हुए अचानक एहसास होता है कि इनके बोल, गायक, संगीतकार और समय भले ही अलग हों, पर इनकी मूल धुन या मीटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं। अलग अलग समय, अलग अलग फिल्मों, अलग अलग गीतकारों और संगीतकारों की रचनाएं, लेकिन इन्हें एक अदृश्य संगीत सूत्र जोड़ता है। यही भारतीय फिल्म संगीत की खूबसूरती है। एक कालजयी धुन समय के साथ नए शब्द पहनती है, नए स्वर पाती है, नए भाव ग्रहण करती है, फिर भी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखती है। एक सुंदर धुन समय की सीमाओं को पार कर कई पीढ़ियों तक जीवित रहती है। आज के सभी गीत, आपने उस राग का जिक्र भी कर दिया है, लेकिन आपने बहुत सुंदर इबारत लिखी है, जो बात हम कहना चाहते थे वो आपने पूरी तरह से कह दी है। तो चलते हैं इस सुरीले सफर पर।

यह आवाज लता मंगेशकर की थी। फिल्म नौजवान के लिए गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के सभी गाने मुख्य रूप से अलग अलग रागों पर आधारित हैं। आपने कुछ रागों का जिक्र किया है। आप लिखते हैं कि कुछ संगीतकारों के अनुसार राग पहाड़ी, राग देश के प्रभाव वाली धुनों से प्रेरित हो सकते हैं आज के गीत। और आपने आगे लिखा है कि राग बिहाग भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी हिंदुस्तानी संगीत का एक अत्यंत मधुर, लोकप्रिय और श्रृंगार रस प्रधान राग है। इस राग की मुख्य विशेषताएं आपने लिखी हैं कि गंभीर और शांत प्रकृति का है और श्रोताओं को एक आध्यात्मिक और कोमल चांदनी जैसी शांति का अनुभव कराते हैं ये राग। जी हाँ, लेकिन आज के गाने तो राग बिहाग पर आधारित नहीं है और ना ही हमारा उद्देश्य है कि हम किसी राग पर हमारे श्रोताओं से जानना चाहें, क्योंकि वही बात कि हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मों का चयन नहीं कर सकता है। हमारा उद्देश्य था कि आज के गीत जो हमें एक सी अनुभूति दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शास्त्रीय रागों का जिक्र किया है जिसका आज हम यहाँ पर पठन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ताकि अच्छा लगेगा आज का ये कार्यक्रम कि शास्त्रीय राग कौन राग आपको प्रभावित करता है और किस तरह से प्रभावित करता है, ये भी जानने का अवसर हमें मिलेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप पहली लेकर आए हैं जिसमें दो बातें उभर कर सामने आई हैं। सिर्फ शब्दों के आधार पर गाने चुने और वो एक ही भाव और मूड के हों तो शायद राग अलग अलग हैं, लेकिन अगर सिर्फ शास्त्रीय राग को आधार बनाएं तो दिए गए शब्दों में कुछ गाने शायद नहीं है। हाँ, अंतरे में कहीं एक दो शब्द हैं, इसलिए अगर एक ही जैसी धुन पर गानों और एक ही राग की बात है तो ठंडी हवाएं, और आपने कुछ गानों का जिक्र किया है और बहुत सही किया है। हाँ, लेकिन आप जिस राग का जिक्र कर रहे हैं वो शायद न हो। आप लिखते हैं कि आज मेरे हिसाब से तो राग यमनी चुना होगा और मैं ऐसा मानता हूँ, और इसी राग पर कई गाने रखे गए हैं और आपने आगे भी लिखा है कि कुछ राग पहाड़ी पर भी आधारित हो सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतों का किसी न किसी राग से क्या नाता, उसके बारे में जानकारी आज के कार्यक्रम में क्या हमें मिलेगी। वैसे कोई भी गीत हो वो फिल्मों में उस दृश्य पर बनाया जाता है और वो गीत किसी राग पे आधारित ही बनेगा। ये राग कौन से हैं ये हमारे कई गुणी रेडियो श्रोता ही जानते हैं। वैसे आज के गीतों को आपने भी किसी राग का जिक्र किया है उस पर ज्यादा संगीतबद्ध किया हुआ लगता है, पर मुझे पक्का पता नहीं। वैसे मैंने सभी गीतों की लिस्ट भी भेज दी है, देखें कितने गीत मेरी लिस्ट के बचते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये, और हमने जो आपको शब्द दिए उन शब्दों के आधार पर तो हम सिर्फ शास्त्रीय रागों का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत अपने अस्तित्व को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो सिर्फ किसी का लिखा या किसी का लयबद्ध गीत ही नहीं रह जाता, वे दशकों तक अपने सुनने वालों के हृदय में बस जाते हैं। जैसे कि आज के इबारत के गीत जिनके बोल तो अलग हैं मगर धुन कमोबेश एक सी है। अतीत की परछाई को टटोलें तो और न जाने कितने ऐसे गीत कहीं न कहीं सांस ले रहे होंगे, यानी उमड़ रहे होंगे। मन का आंगन भीग रहा है और मैं सोच रही हूं क्या कभी ऐसा भी कोई वक्त था जब मेरे साथ ये गीत नहीं थे। तो एक ही जवाब आता है, गीत चाहे कोई भी हो ये गीत ही हमारे मित्र हैं, सहोदर हैं। इन गीतों ने ही हर उदासी को मुस्कान में और अवसाद को हौसले में बदला है, जैसे कि ये गीत आपने कुछ

गीतों का जिक्र भी किया है, बिल्कुल सही कहा आपने, बस उन्हीं गीतों को आज हम लेकर आए हैं। तो अभी आपने जो गीत सुना था फिल्म नौजवान से, उसको ध्यान में रखिए और सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल वैसा ही तो है ये गीत।

जी, तो अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था चांदनी चौक। हमारे श्रोताओं को बताना है कि इस गीत को आवाज किसने दी थी और गीतकार संगीतकार के नाम भी अगर आप बता दें तो हमें अच्छा लगेगा, है ना। कितना प्यारा गीत था ये, और गायिका का नाम बताइए, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सुरीला सफर थोड़ा कठिन लग रहा है। कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। आंखों को बंद कीजिए, भीतर सांस खींचिए और पता लगाइए कि क्या जो मुझे लगा वो आपको भी लग रहा है कि हाँ, ये गीत सुनने में एक ही तरह के तो लग रहे हैं, है ना? वही भाव, वही उसी तरह का माहौल। तो अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आज का ये सफर आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राग की पहचान करना तो मुश्किल नहीं है, हवाएं और दिल जैसे शब्दों से ही पता चल जाता है कि आज का कार्यक्रम किस राग पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने अंदाज में अव्वल अनुसंधानिक अभिनव प्रयास की एक और अनुपम श्रृंखला स्वागत योग्य और सराहनीय है। राग रागिनी के तिलस्मी सम्मोहन से समरसता संभाव युक्त गीत संगीत आधारित कार्यक्रम कुछ जटिल मगर संभाव्यतापूर्ण है। नई दिशा दर्शन कराती सुरीला सफर का रोमांच आज संभवतः अपनी चरम पर रहेगा, इंतजार है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और आगे आप लिखते हैं कि समानता वाले संभावित गीत आपने लिखे भी हैं और बहुत गीत आपके सही जा रहे हैं। आप सुनते रहिए कार्यक्रम को अंत तक और आपको पता लगेगा कि जो आपने सोचा ठीक वही हमने भी सोचा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गाने का कोई भी हो इबारत पढ़कर लगता है कि वाकई में आज तो सुरीला सफर सुरीला होगा। मधुर और सदाबहार गीतों के माध्यम से आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक का सफर

रिला तो होगा ही, तो मिलते हैं दोपहर 1 बजे से। अगला गीत हम आपको सुनवाएं, उससे पहले हमारे दो सवाल।

जी, तो आपको बताना है कि ऐसे और कौन से दो गीत जो आपको याद है या आपको महसूस हुए, उन गानों का जिक्र करिए, सिर्फ दो गानों का, जिसमें आपको लगेगा कि ये दोनों गीत जब जब मैंने सुने मुझे लगा कि ये दोनों गीत एक से हैं। और हमारा दूसरा सवाल, अगर आप शास्त्रीय संगीत का ज्ञान रखते हैं, हमारे जो श्रोता, जैसा कि हमें हमारा फेसबुक पेज देखने पर, पढ़ने पर पता चल रहा है, तो आपको कौन सा शास्त्रीय राग पर आधारित गाया हुआ गीत ज्यादा प्रभावित करता है? अपनी अपनी पसंद के राग होते हैं ना, तो आपको किस राग ने ज्यादा प्रभावित किया, ये वही लिखें जिन्हें शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गानों का थोड़ा सा विज्ञान है। सवाल एक बार फिर से कि आप बताइए ऐसे दो गीत जो लगभग एक जैसा ही गाए हुए आपको महसूस होते हैं। और हाँ, हमारे जो शास्त्रीय संगीत के रसिक श्रोता हैं, जिन्हें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है या उन्होंने शास्त्रीय गायन सीखा हुआ है, तो बताइए आपको किस राग पर आधारित फिल्मी गीत ज्यादा पसंद आए। और हाँ, हमने आपसे पूछा था कि फिल्म चांदनी चौक में जो गीत गाया गया है वो किस गायिका की आवाज है और संगीतकार और गीतकार कौन है। और अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मदन मोहन का संगीत है, राजा मेहदी अली खान के बोल हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम आपकी परछाइयां। ये गीत भी हमें थोड़ा थोड़ा वैसा ही महसूस होता है जैसे इससे पहले के दो गीत आपने सुने थे। यही

जी, तो आज फेसबुक पेज पर जब हम नजर दौड़ा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आज का ये सफर थोड़ा सा कठिन हो गया है हमारे श्रोताओं के लिए, जबकि कठिन नहीं है। भाई बड़ा रुक रुक कर चल रहे हैं आप लोग। तो हमने तो आपसे वादा लिया था कि सुजिला सफर में आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे और दुख तकलीफें जो भी कुछ आएगा उसे महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन लगता है हमारे श्रोता थोड़ा सा थक गए हैं, है ना? थके नहीं, हमारे साथ चलते रहिए और अंततः हमें मंजिल मिलेगी जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सभी को हमारा नमस्कार। आज आप कुछ अलग ही थीम लेकर आई हैं, राग रागिनी का तो हमें नहीं पता, हमारे जो गाने हमें याद आएंगे उन्हें हम लिख भेजेंगे। हाँ तो लिख भेजिए ना कि आपको ऐसे कौन से गीत याद आ रहे हैं जब आपने इन्हें जब जब सुना तो लगे आपको ऐसा लगा कि अरे ये गीत तो हमने पहले भी सुना था और ये गीत भी वैसा ही लग रहा है। तो इस तरह के भाव कई बार हमें लगता है। हम हालांकि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं हो सकते, लेकिन एक श्रोता मात्र होते हुए भी हम ऐसा महसूस तो कर ही सकते हैं ना। तो उन दो गानों का जिक्र आपको करना है और जो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं हमारे श्रोता वो तो हमें बता सकते हैं कि उन्हें किस राग पर आधारित कौन सा गीत ज्यादा पसंद आता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमें राग कभी समझ ही नहीं आए और न ही कभी हमने समझने की कोशिश की, बस हमने गीतों से प्यार किया, फिर राग कोई भी हो, जो गीत हमें अच्छा लगा उसे गाया गुनगुनाया और आज तक गीतों के साथ हैं। कुछ गीतों से बहुत कुछ सीखा है और कुछ गीतों ने हमें सहारा भी दिया है, कुछ गीतों को सुनकर हमने बहुत अच्छे से काम भी किए और हाँ कुछ गीत उदास भी कर गए, पर फिर कुछ गीतों ने जीवन के सच्चे राज भी दिखाए जिनके साथ रहकर हमारा इतना सफर कट गया, बस आगे का सफर भी अच्छा बीते इन गीतों को गुनगुनाते हुए। कितनी बढ़िया बात लिखी है आपने, बिल्कुल सही कहा आपने और वही हम भी आपसे चाहते हैं कि एक श्रोता मात्र बनकर आप उन गीतों को याद कीजिए जो कभी आपको लगे होंगे कि ये गीत हमें एक जैसे लगे। बस इतना ही तो सोचना है कि दो गीत कौन से ऐसे दो गीत थे जो हमें एक जैसे महसूस हुए, है ना? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का जो शब्द है वो एसडी बर्मन साहब की धुनों से प्रेरित होकर लग रहा है ठंडी हवाएं, और फिल्म के गीतों से मिलते जुलते सभी गीतों की धुन भी हम आज सुनने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हवाएं शब्द पर हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन और सदाबहार गीत बने हैं जो प्यार, उदासी और मौसम के अलग अलग रंगों को दर्शाते हैं। यहाँ हवाएं या हवा से जुड़े कुछ सबसे लोकप्रिय गानों की सूची भी आपने दी है और आपने हमारे हर शब्द पर बहुत कुछ लिखा है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हर शब्द पर अपनी राय हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पुराने गीत सिर्फ कानों में नहीं गूंजते, वे यादों में महकते हैं और जब उन्हें सुनने वाले दिल से जुड़े हों तो हर धुन अपनी सी लगने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम किसी गाने से दिल से जुड़ जाते हैं तो हर गीत हमें अपना सा लगने लगता है। चलिए ये जो गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं वो भी आपको अपना सा ही लगता है। याद आया?

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था ममता। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे रोशन। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा कि जब रागों की बात करते हैं, खासकर फिल्म संगीत में, तो शुद्ध राग पूरे गाने में शायद ही बजाया गया होता है, क्योंकि कभी कभी कहानी के भावों को विस्तृत रूप से उभारने के लिए स्वरों में फेरबदल भी की जाती है, यानी मिश्रित रागों की धुनें ज्यादा सुनाई देती हैं ताकि गीत अपने भाव को अच्छी तरह से दर्शकों के दिल तक पहुंचा सके। कहने का मतलब है कि रहे न रहे महका करेंगे गीत की शुरुआत पहाड़ी के स्वर के साथ हुई, लेकिन अंतरे में कहीं यमन राग नजर आ रहा है जो रोशन जी का सबसे मनपसंद राग था। आज रागों की अच्छी व्याख्या सभी मित्रों ने की है, धन्यवाद सभी मित्रों का। बिल्कुल, हम तो आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आपने अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कहा है, जो हमारे वो श्रोता इस बात को समझ पाएंगे जिन्हें शास्त्रीय रागों का ज्ञान नहीं है, या उनमें उनका क्या कहना चाहिए, उत्साह नहीं है या शौक नहीं है या नहीं जानते वो उसके बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोई भी गीत जो है एक ही राग पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रागों को मिलाकर भी कई बार इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने बता भी दिया है कि फिल्म चांदनी चौक के बारे में आपने पूछा था कि गीतकार और संगीतकार कौन है, तो मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं रोशन साहब। बिल्कुल सही लिखा आपने, और ये गाना स्मृति विश्वास पर फिल्माया गया था। और आपने ये नहीं बताया कि आवाज़ किसकी थी, गायिका का नाम भी हमें बताइए तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। वहीं आप लिखते हैं कि दरअसल आज के सारे गाने एक राग पर नहीं हैं बल्कि

एक मीटर पर आधारित है और आपने किसी गाने का जिक्र भी इस सूची में शामिल किया है। आप लिखते हैं कि आपका पसंदीदा राग, यानी कि मेरा पसंदीदा राग है कलावती, बागेश्री, शंकरा, देस और मालकोस। अच्छा, ये राग आपको बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं। जो जैसा हमारे श्रोता कह रहे हैं कि थोड़ा सा कठिन है आज का ये सफर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मन की आंखों से जब इस कार्यक्रम को महसूस करेंगे तो शायद आपको भी सफर अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का हमें इंतजार था और अब वक्त यूं ही बीत जाएगा। सुहाना मौसम है, शुभ दोपहर है, साथ ही आपका कार्यक्रम चल रहा है उनके साथ, यानी मेरे साथ मंदाकिनी दीदी के साथ। प्रस्तुति सुंदर, कर्ण मधुर, मनमोहक है और हमारे दिल को ठंडक पहुंचा रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम सुनेंगे अंत तक, ऐसा हम वादा करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हमारे यहाँ सचमुच ठंडी हवाएं चल रही हैं जो बादलों को उड़ाकर ले जा रही हैं। आइए सुनते हैं इसी क्रम में अगला गीत।

तो देखा आपने संगीत का असर। हमारी एक श्रोता पूछ रही है कि भाई ये किस फिल्म का गीत है जो अभी आप सुनवा रही हैं? बिल्कुल रहे ना रहे हम वाली गीत जैसी धुन का है, जैसा गीत है। हमने आपसे यही तो कहा ना कि कई बार जब हम बहुत ही गहराई से किसी गीत को सुनते हैं, हो सकता है हम उस मीटर को ना समझते हों कि ये गीत किस मीटर में गाया गया है, लेकिन जब हम उसे बहुत गहराई से सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो उस गाने की धुन जैसा ही है जैसा कि अभी हमारी श्रोता ने पूछा। तो हम आपको बता दें, ये आशा भोसले की आवाज में फिल्म नरम गरम से हमने लिया था ये गीत। गुलजार साहब के बोल थे और राहुल देव बर्मन की धुन थी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि दादा बर्मन ने 1951 में फिल्म नौजवान में एक गीत रचा था, ठंडी हवाएं लहरा के आई। लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर साहब के बोलते। इस गीत के माधुरी से प्रभावित होकर दादा के समकालीन संगीतकार रोशन ने 1954 में फिल्म चांदनी चौक में गीत रचा, तेरा दिल कहाँ है। इसमें आवाज आशा भोसले की है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गायिका आशा भोसले हैं जिनकी आवाज हम सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन की धुन तो थे ही, लेकिन दादा का गाना संगीतकार मदन मोहन को इतना भाया था कि उन्होंने 1964 में फिल्म आपकी परछाइयां फिल्म में इसका मुखड़ा इस्तेमाल किया। यही है तमन्ना, जिसका गीत अभी आपने सुनवाया था, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए। कहानी यही खत्म नहीं हुई, संगीतकार रोशन साहब ने इसी धुन को फिर इस्तेमाल किया 1966 की फिल्म ममता में और लता मंगेशकर से गावाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना रहे ना रहे हम महका करेंगे। अब ये गीत इतनी प्रसिद्धि देखने के बाद पिताजी की आरडी बर्मन ने भी इस धुन को आधार बनाकर कुछ गीत बनाए और 1981 में आशा भोसले का गाया फिल्म नरम गरम का गाना हमें रास्तों की जरूरत नहीं, जो कि अभी आपने सुनवाया, इसी धुन का एक बार और इस्तेमाल किया गया। और 1983 में फिल्म अगर तुम न होते में भी इसी को फिर से उन्होंने दोहराया। बात और आगे बढ़ी और आपने इसी तरह से बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी गहराई से इस बात को रखा कि आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं वाकई इसी बात पर आधारित है कि किस तरह से गीतों को रचा गया और किस तरह से जब संगीत प्रेमी श्रोता उन्हें सुनते रहे तो उन्हें लगा कि अरे ये उस गाने की जैसा ही गाना है। बस यही आज के कार्यक्रम की असली थीम है। तो आइए बढ़ते हैं आगे।

वही जो हमारे श्रोता भी लिख रहे थे कि आगे अगर तुम न होते इस फिल्म में भी इसी बात को दोहराया गया, इसी मीटर को दोहराया गया। किशोर कुमार की आवाज है, गुलशन बावरा की रचना है और पंचम दा की धुन है।

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था अगर तुम न होते। और मैं हमारे उसी श्रोता की बात को आगे भी रखना चाहूंगी जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रख दी है इस कार्यक्रम के लिए। यूं समझिए कि ये पूरा कार्यक्रम उनकी लिखी इस इबारत में आ गया है। बिल्कुल, वो लिखते हैं कि अगर तुम न होते 1983 की फिल्म थी और हमें और जीने की चाहत न होती, बात और आगे बढ़ी। और 1985 आरडी बर्मन ने इसी धुन पर बनाए एक और सुपरहिट गाना फिल्म सागर का लिया। और फिर आप लिखते हैं कि आरडी बर्मन के संगीत साम्राज्य के नौ रत्नों में से एक बासु चक्रवर्ती साहब ने भी इस धुन के नोटेशन पे थोड़ा हेर फेर कर 1992 की फिल्म नरगिस में जगजीत सिंह साहब से दो गाने गवाए थे, कहा था जो तुमने और दूसरा था दोनों के दिल हैं। और दोनों को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि किस तरह से ये गाने आपस में मेल खाते हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतनी गहराई से अपनी बात हम तक पहुंचा दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, अच्छा अब हमारे सवालों के जवाब आप देने लग गए हैं। आप लिखते हैं कि एक प्यार का नगमा है, मेरी तमन्नाओं की तकरीर और तुम अगर मुझको ना चाहो, ये गीत आपको एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, यहाँ पर हमें शास्त्रीय रागों पर आधारित एक जैसे गीत नहीं चुनने हैं, क्योंकि वही बात कि हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों को समझने के लिए जरूरी नहीं कि उसके पास शास्त्रीय ज्ञान हो। हाँ, वो क्या महसूस करता है एक श्रोता के तौर पर, एक श्रोता के रूप में, वही काफी है। तो आपको कौन से गीत एक से लगते हैं वही हम जानना चाह रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि ये किस फिल्म का गीत था, बिल्कुल रहे ना रहे हम जैसी धुन, अरे आपने अभी तो सुना था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय थोड़ा कठिन है पर आज गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो भाई सफर थोड़ा कठिन भी तो अच्छा लगता है ना, लेकिन आपको मेरे साथ अंत तक, हमारे साथ अंत तक चलना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रागों का ज्ञान हो, ऐसा नहीं है, रागों का ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो गाने शास्त्रीय तरीके से गाए जाते हैं वो बहुत पसंद है, जैसे कि झनक झनक तोरी बाजे पाए लिया। अच्छा, ये गीत आपको बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी चौक 1954 की फिल्म, ये गाना भी नौजवान वाले मीटर से ही बंधा है, गीत शैलेंद्र, संगीत रोशन, स्वर आशा भोंसले का था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म चांदनी चौक के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था, संगीतकार रोशन साहब थे, गीतकार शैलेंद्र नहीं थे भाई, मजरू साहब थे और संगीतकार रोशन थे और आवाज आशा भोंसले की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे राग शिवरंजनी ज्यादा पसंद है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने ऐसे कई गाने विविध भारती पर सुने जो एक जैसे हैं पर अभी याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, वही काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गिटार के साथ पियानो का प्रिल्यूड, राग पहाड़ी है चांदनी चौक, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, एसडी बर्मन के नौजवान के गाने से जबरदस्त शुरुआत हुई और सभी की पसंद का सम्मान किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही एक और गाना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ सुनते हैं, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम सागर।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मैं शास्त्रीय रागों के मामले में अनाड़ी जरूर हूँ, कोई बात नहीं, परंतु मैं सच कह रहा हूँ कि महकते हुए अच्छे श्रोता की तरह सुरीला सफर प्रोग्राम में आप द्वारा सुनाए जा रहे अनमोल गीतों का मैं आनंद जरूर ले रहा हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इतनी समानता सब धुनों में, मजे की बात है, सबकी खुशबू अलग अलग है, कमाल है हमारे भारतीय संगीत को और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुल मिलाकर कार्यक्रम का विषय वस्तु संग ताल मिलाकर श्रोतागण भी सक्रिय हैं और बराबर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने अपनी पसंद के गीत लिखे हैं कि वो उन्हें एक जैसा लगता है, आज मौसम की मस्ती में या दो बदन प्यार की आग में, इस तरह के गीत उन्हें पसंद आते हैं और वो

एक जैसे उन्हें महसूस होते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि इस सुरीले सफर का विशेष आकर्षण है फिल्म ममता का अमर गीत रहे न रहे हम। संगीतकार रोशन ने इस गीत में राग पहाड़ी के स्वरों का अत्यंत सटीक, संतुलित और सुरुचिपूर्ण प्रयोग किया। यही कारण है कि ये गीत केवल अपनी मधुर धुन के लिए नहीं बल्कि राग पहाड़ी की आत्मा को सहजता से अभिव्यक्त करने के लिए हिन्दी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर बन गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ए मेरे हम सफर ए मेरी जान ने से मिलता जुलता गाना है, हसीना जाने जा जाने मन, ये गाने हमें सिमिलर लगते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में गजल तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से, और जॉय मुखर्जी की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का की गजल हमको तुम्हारे इश्क ने, ये हमें अच्छे लगते हैं और सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं पर तो बहुत सारे गीत बने हैं और क्या हो, क्या ही अच्छा हो जब आप हवाओं पर कुछ कार्यक्रम पेश करें। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत कुछ अलग तरह की दी है, इसलिए पहले मुझे घर की बनी हुई अदरक इलायची वाली चाय ऑफिस में पीनी होगी ताकि मेरे दिमाग का केमिकल लोचा एक्टिव हो जाए और मैं सही कमेंट्स लिख सकूं, क्योंकि रागों के मामले में मैं अनाड़ी हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सौंदर्य वही है जहां प्रतीक्षण नवीनता हो। वास्तव में चित्रपट संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है क्योंकि इसकी रचना शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक संगीत और पाश्चात्य संगीत के आधार पर होती रही है। संगीत निर्देशकों ने श्रोताओं की रुचि को ऐसे संगीत का सृजन कर छोड़ा है जो कहीं पर पूर्ण शास्त्रीय संगीत में रचे हैं, कुछ उपशास्त्रीय तो कुछ लोक संगीत में, और इनमें कहीं कहीं पर प्रयोग के तौर पर पार्श्व संगीत और गौण धुन का बेहतरीन संयोजन किया गया है। ध्यान रहे कि गौण धुन मुख्य धुन को दबाती नहीं है बल्कि एक नया संगीतमय रंग और गहराई जोड़कर उसे और आकर्षक बना देती है। कितनी सुंदर और शानदार बात आपने लिखी है। और अब इस कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम प्यार का तराना। इस गीत के बारे में आपको मालूम था? हम्म,

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म प्यार का तराना का ये गीत सुना और आज का ही कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप समझ गए आज के इस कार्यक्रम का मर्म क्या था। जी हाँ, राग पहाड़ी से प्रभावित होकर अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने जो गीत रचे और उसमें अलग अलग शास्त्रीय रागों को पिरोकर एक ही मीटर में जो संगीत हम तक पहुंचाया, उसी को आज आप तक लाना हमारा उद्देश्य था। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अब आपको ये कठिन सफर आज का कठिन नहीं लगा होगा, मुझे लगता है कि अब सफर के आखिरी सोपान पर हम मिल रहे हैं और एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि हमने एक दूसरे का साथ दिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं, यानी सफर से इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 1,423 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। छह योजनाओं के प्रत्येक लाभुकों को 1,100 रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाभुकों को समय पर पेंशन राशि भुगतान की व्यवस्था की गई है, जिससे उनके जीवन यापन में मदद मिल सके। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में एनडीए के घटक दलों की बैठक चल रही है। बैठक में एनडीए के सभी पांचों घटक दलों के वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। बैठक में सरकार के कार्यों की समीक्षा, घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। साथ ही बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल, विकास कार्यों की नियमित निगरानी और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रहे हैं। वे विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को गया जी में विधायकों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय, लोकसभा की प्राइड और पिपार्ट के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

कल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड में रिकॉर्ड 195.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोपालगंज, वैशाली, पूर्णिया और मधेपुरा जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर से

वैशाली, पूर्णिया और मधेपुरा जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में 3000 से अधिक ऐसे नियोजित शिक्षक पाए गए हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की थी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया निगरानी विभाग ने पूरी कर ली है और इसमें 3035 शिक्षक दोषी पाए गए हैं। इन सभी शिक्षकों का नियोजन वर्ष 2006 से लेकर 2015 के बीच हुआ था। उन्होंने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने के मामले में अब तक 1830 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि दोषी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। मुंगेर जिले के भीमबांध के जंगल में पुलिस ने 4 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 510 लीटर शराब और लगभग 8 क्विंटल चावा महुआ भी बरामद किया गया। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत डोभी चेक पोस्ट के पास पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक ट्रक से 807 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे को ओडिशा से लाया जा रहा था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

गए हैं। इन सभी असातिज़ा का नियोजन साल 2006 से लेकर 2015 के दरमियान हुआ था। उन्होंने बताया कि फर्जी असनाद पर नौकरी करने के मामले में अब तक 1830 इत्तला अव्वल दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि कसूरवार असातिज़ा की सर्विस ख़त्म करने का अमल भी शुरू किया जा रहा है। वस्त मशरकी रेलवे ने मुसाफिरों की इजाफी भीड़ के पेश नज़र चलाई जा रही 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की आमदोरफ्त के अवकात में तौसी की है। चीफ राबता आम अफसर सरस्वती चंद्र ने बताया कि इनमें पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन, बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन स्पेशल और दानापुर आनंद विहार स्पेशल समेत दीगर ट्रेनें शामिल हैं। मुंगेर जिला के भीम बांध के जंगल में पुलिस ने 4 शराब भट्टियों को मुनहदिम करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 510 लीटर शराब और तकरीबन 8 क्विंटल जावा महुआ भी बरामद किया गया। गया जिला के बाराचट्टी थाना इलाके के तहत डोभी चेक पोस्ट के करीब पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक ट्रक से 807 किलो गांजा के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे को उड़ीसा से लाया जा रहा था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: और इस गीत के बाद
2: छाया की।

0: is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: Namaskar. ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 6,715 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें। पता है www.ibps.in। रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 6,565 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास BE, BTEC, इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट जाएं, पता नोट करें www.indianraialways.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के 150 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पता है www.bpssc.bihar.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अपराह्न के समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है, और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों

0: ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित

0: करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश सोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
2: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मुजफ्फरपुर, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले

0: पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम आशिक, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है आरती, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन रोशन की।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम असली नकली।

फिल्म रंगोली का गीत सुनिए, इसे आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार शैलेंद्र हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है. उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके.
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी.
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है. गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं.
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले.
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है.
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन, रचना शैलेंद्र की और धुन एस एन त्रिपाठी की.

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गीता दत्त को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था साहिब बीबी और गुलाम। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा था और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज होंगी कुछ बारिश से जुड़ी बातें, यादें और किस्से, क्योंकि बारिश का मौसम सबको लुभाता है। बारिश में भीगने का मन और नाचने का मन किसी न किसी का तो होता ही होगा। बारिश में बचपन बहुत याद आ जाता है, जब बचपन में शरारते मस्ती क्या करते थे और बारिश के पानी के संग खेला करते थे, तो वो कुछ यादें भी आज ताज़ा होंगी। तो आज हम इसी पे करेंगे चर्चा, जिसमें नहीं लगेगा कोई खर्चा, है ना। तो मुझे सुनाई दे रही है फ़ोन की घंटी और देखते हैं कि कौन है हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, सोनिया।
0: सोनिया जी, आप बड़ौदा से बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, मैं आज आपने फोन लगाया, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: अच्छा लग रहा है मेरे को
0: जी। और क्या करती हैं आप?
1: हमारी लॉन्ड्री है, बंगाली में है, हमारी लॉन्ड्री खुद की है
0: जी।
1: और यहाँ पे कोयली गाँव में हमारा मकान है
0: जी।
1: अभी हमारे छोटा बाबू

0: है, अभी 1 महीने का हुआ है।
1: अच्छा, अरे वाह, तब तो बहुत आप बिजी रहती होंगी इसमें।
0: हाँ, 7 साल बाद में आया अभी।
1: अच्छा, चलिए, आपको अपने छोटे से बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और
0: हाँ,
1: ये बताइए सोनिया जी, कि बारिश आपको कैसी लगती है? बारिश में आप क्या क्या और चीज़ें ध्यान रखती हैं, उस पर भी हमें कुछ बताइए।
0: बारिश अच्छी भी लगती है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। ये
1: जी, किस तरह का आप ध्यान रखती हैं बारिश में?
0: कि बच्चे गीले ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सर्दी जुकाम का ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब बच्चा आ गया छोटा, तो
1: जी
0: इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा।
1: जी और बारिश की कोई जुड़ी यादें बचपन में हो आपकी?
0: जी, बचपन में तो बहुत नहाते थे हम लोग, बारिश जैसे बारिश होती थी वैसे बहुत नहाते थे बाहर जाके।
1: अच्छा, सुनिए जी, आपको जो गाना पसंद है उसके बोल बताइए।
0: पापा में पापा बन गया, मेरे बाबू का नाम राघव है, राघव रखा है।
1: अच्छा जी, राघव जी को तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: से बारिश होती थी वैसे बहुत नहाते थे बाहर जाके।
1: अच्छा सुनिए जी, आपको जो गाना पसंद है उसके बोल बताइए।
0: पापा में पापा बन गए, मेरे बाबू का नाम राघव है, राघव रखा है।
1: अच्छा जी, राघव जी को तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: पापा!

0: जी
1: उनको कॉपी पुस्तक दिलाते हैं।
0: जी तो ये तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं। क्या है
1: हमारी संस्था ने एक स्कूल को गोद लिया है, तो
0: जी
1: उसके बच्चों को हम लोग हर साल 15 अगस्त पर गिफ्ट वगैरह देते हैं
0: जी,
1: और कार्यक्रम करवाते हैं हम लोगों से।
0: तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते होंगे कि जब उनको
1: बहुत
0: गिफ्ट मिलता है। और
1: बहुत खुशी होती है बच्चों की।
0: जी और बताइए और अपने बारे में कुछ।
1: जैसे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिलवाते हैं, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं
0: तो जिनको मान लीजिए सिलाई नहीं आती है तो उनको भी आप देती
1: उनको
0: हैं?
1: नहीं, उनको हम जैसे हमारे ग्रुप में जो महिलाएं को आती है सिलाई, उनसे प्रशिक्षण दिलवाते हैं पहले,
0: जी जी जी
1: फिर उसके बाद उनको सिलाई मशीन दिलवाते हैं
0: जी तो फिर
1: जैसे नहीं आता है।
0: हाँ जी
1: एक खूब गरीब परिवार की बेटी थी,
0: जी
1: उसका माँ बाप नहीं थे, तो उसका विवाह हम लोग की संस्था ने करवाया।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है ये तो। और बताइए क्या आज आप सुनना चाहेंगी?
1: अब मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट गाना है, आँखियों के झंझरों के से जो देखा एक बार।
0: क्या बात है, ये गाना ही बहुत अपने आप में बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बस इसी तरह हमारे वेद भारती से जुड़ी रहिए। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये वाला प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं समा दीवान बोल रही हूँ, नर्मदापुरम जिला तहसील सोहागपुर से।
0: जी, आप क्षमा दीवान?
1: जी
0: जी क्षमा दीवान जी, आप बताइए कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है।
0: बारिश में क्या खास करती हैं आप?
1: मैं वृक्षारोपण वगैरह करती हूँ, बम बीज बनाती हूँ,
0: जी
1: उनको बिखेरती हूँ जंगलों में जाके, नहरों पे जाके।
0: अच्छा,
1: हमारी एक संस्था है महिलाओं की,
0: जी
1: तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे ये बनाते हैं और जाते हैं ग्रुप में और सभी दूर उनको बिखेरते हैं।
0: अच्छा,
1: हम लोग इसमें करते हैं, जैसे स्कूलों में जाके गरीब बच्चों की फीस वगैरह भरते हैं।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनीता राजपूत दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
1: हमारे परिवार, हमारे पति को बहुत शौक है संगीत का,
0: जी
1: बहुत ज्यादा शौक है। और मेरे बेटे, बहू है और बेटी भी है, हम लोग 5 जन हैं।
0: क्या
1: अभी
0: बात है।
1: जी
0: आपको बारिश का मौसम कितना पसंद है?
1: अच्छा लगता है, पानी गिरता है जब
0: जी,
1: टिमटिमा पानी गिरता है तो अच्छा लगता है।
0: क्या मन करता है कि बारिश में भीग ले, नहा ले?
1: जी, घूमने कहीं चले जाएं और क्या।
0: क्या बात है, हरी हरी वादियों के बीच में घूमने जाए हैं।
1: जी जी
0: बचपन की कोई आपकी कुछ यादें, दोस्तों के संग हो, सहेलियों के संग हो, कुछ यादें यादें तो साझा कीजिए।
1: जी जी मैं 4 भाइयों में एक बहन हूँ,
0: जी
1: तो साथ में खेले हैं हम लोग
0: जी
1: पानी में, बारिश में वहाँ पर।
0: जी
1: जी, तो अच्छा लगता था, पहले बचपन की बहुत यादें आती हैं हम लोगों को।
0: अब ये
1: जी जी
0: बताइए कि आपको कौन सा गाना आज सुनवाया जाए, आपकी पसंद का?
1: हमारे लिए विवाह फिल्म का कोई सी भी गाना अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, नीता जी आपको
1: जी
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का
1: जी
0: विवाह फिल्म का कोई भी गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं स्मिता बेन राजेंद्र कुमार शाह अहमदाबाद साबरमती से बोल रही हूँ।
0: स्मिता जी बोल रही हैं। तो स्मिता
1: हाँ,
0: जी, बारिश का जो मौसम होता है, तो जब आप बच्ची थी तो आपको कैसा लगता था? क्या क्या आप खेल
1: मेरे को
0: करती
1: तो
0: थी?
1: बारिश में भीगना और पानी में छप छप करना बहुत अच्छा लगता था पहले।
0: तो और बताइए अपने बारे में, आपको क्या शौक है, अपने दिन को कैसे बिताती हैं, ये इस बारे में कुछ बताइए
1: मेरे को सबकी मदद करना अच्छा लगता है।
0: जी।
1: मैं रिटायर्ड पोस्ट वुमेन हूँ,
0: जी,
1: गुजरात की फर्स्ट लेडी पोस्ट वुमेन हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बड़े गर्व की बात है
1: अभी रिटायर्ड हो गए, 8 साल हो गए, 68 की हो गई। मैं
0: जी। तो
1: सबको हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को। कोई
0: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
1: बीमार हो गया तो मैं दवा भी बहुत सत्कार करती हूँ।
0: तो ये बहुत नेक काम है, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं, हम तो कहते हैं बहुत पुण्य का काम करते हैं वो। तो और स्मिता जी, ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: ये दिल अपना और पीत पाई का गाना है। दिल अपना पीत खराई।
0: जी, बहुत सुंदर सा गीत आपने चुना है, दिल अपना और प्रीत पराई। तो चलिए स्मिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सरिता पांडे बोरीवली से बोल रही हूँ।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं, घर में क्या क्या शौक हैं आपके।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: जी,
1: मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत।
0: और सरिता जी, हम आज बात करने वाले हैं बारिश के विषय में कि बारिश आपको कितनी अच्छी लगती है और बारिश में आप क्या क्या सावधानियां रखती हैं।
1: बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। बारिश में घर गंदा ना हो, ये सब साफ सुथरा रखता है।
0: जी बिल्कुल। और बारिश में आपने कभी बचपन में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करी।
1: हाँ, हम लोग बारिश में गांव में रहते थे। मेरा गांव सुल्तानपुर है।
0: जी
1: हम लोग गांव में बारिश में खेलते थे,
0: अच्छा,
1: खो खो खेलते थे।
0: ये बताइए कि जब कभी घर में कुछ खत्म हो जाता है रसोई में, तो फिर अचानक आप क्या सोचती हैं कि मेहमान के लिए हम क्या बना दें फटाफट।
1: जो कुछ रहता है उसको मिक्स करके हम लोग उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिश बना के मेहमान को देते हैं।
0: क्या बात है, यानी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है ना गृहिणी
1: बन
0: की।
1: ही जाता है।
0: जी,
1: हाँ
0: जैसे पकौड़ी बना ली, सूजी का हलवा बना लिया,
1: हाँ
0: है ना।
1: कुछ भी बना। हाँ,
0: और मान लीजिए सूजी कम है तब।
1: इसमें थोड़ा बेसन या बेसन मिक्स कर देते हैं, वो भी अच्छा बनता है हलवा।
0: बिल्कुल सही बात आपने बताई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सूजी कम है तो उसमें बेसन मिला दिया। और आपके परिवार में और कौन कौन है।
1: मेरी फैमिली बड़ी है, जेठ जेठानी
0: जी
1: बहू पोते
0: जी
1: पोती
0: क्या बात है, भरा
1: बच्चे।
0: पूरा परिवार है, यानी कि बहुत
1: हाँ
0: अच्छा लगता है आपको, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सरिता जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी।
1: हम आशीर्वाद फिल्म का बारिश का गाना।
0: ठीक है सरिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ यूं पल में खत्म और आपकी दोस्त मंजरी वर्मा फिर आपसे बातें करने आ गई है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली,
0: जी स्वागत है।
1: नमस्ते मंजरी जी।
0: अरे वाह, आपको तो मेरा नाम याद है।
1: अरे आपकी आवाज से पहचान गए मंजरी जी।
0: और बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: एक हाउस वाइफ हूँ, साधारण सी गृहिणी।
0: प्रतिमा जी, आप हाउस वाइफ है, साधारण सी गृहिणी आपने कहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप साधारण सी नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। और हर गृहिणी जो होती है वो पूरे परिवार की एक धुरी होती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और सुबह उठती है और रात में ही वो पूरे घर के काम निपटा के सोती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, सेवा भाव है। मेरे दिल में बहुत सम्मान है गृहिणियों के लिए, जो भी गृहिणियाँ हैं उनके लिए बहुत सम्मान है। और बताइए कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो वो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत पसंद है। इतना सुंदर हरियाली चारों तरफ हो जाती है,
0: जी
1: ऐसा लगता है जैसे पेड़ पूरे नहा लिए पानी से,
0: हाँ।
1: हरी भरी हो जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम
0: जी। और
1: और उसके तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं उस समय रेडियो में कि वो सुन के भी मन खुश हो जाता है।
0: क्या बात है। और बारिश में बचपन में कोई शरारतें आपने सखियों के साथ या भाई बहनों के साथ करी हो या मस्ती करी हो, कुछ ऐसे किस्से याद है आपको?
1: बारिश में देखिए, पहले की तो बात बताएं तो हम लोग को जैसे ही बारिश देखते थे तो स्कूल जाने में छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की बड़ी खुशी होती
0: हाँ।
1: थी। और अब की जो बारिशें हैं उसमें ये खुशी होती है कि चलो अब ये लोग ऑफिस नहीं जाएंगे।
0: सही बात है। और वो अगर
1: घर में पकौड़े और सब ये सब बनेंगे।
0: क्या बात है, यानी कि आप गृहिणी बिल्कुल अच्छी वाली गृहिणी है कि सबका इंतजार कर रही है कि पानी हो और ये लोग नहीं जाए तो हम पकौड़े वगैरह बनाए। बढ़िया बढ़िया है ना। तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। प्रतिमा जी ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ, तो बस रात तक।
0: क्या बात है। तो सबसे अच्छे प्रोग्राम आपको विविध भारती के क्या

0: हैं।
1: सबसे अच्छी भी है हम वंदन वार,
0: जी जी
1: उसमें
0: जी
1: जो चिंतन आता है वो बहुत अच्छा लगता है। और
0: क्या बात है।
1: रामचंद्र चरित मानस में जो पहले उसकी समीक्षा करते हैं, बताते हैं
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: स्टोरी,
0: जी
1: वो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि
0: क्या बात है,
1: वो सुनो तो उसके बाद वो रामायण सुनने में बड़ा समझ में आ जाता
0: सही बात है। उसकी
1: है ना,
0: विस्तार व्याख्या सुन के बहुत अच्छा लगता है ना।
1: बहुत अच्छा लगता है। हाँ,
0: तो
1: और
0: यार
1: बाकी प्रोग्राम सभी अच्छे हैं विविध भारती के,
0: जी,
1: तो मैं
0: और
1: सब सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा।
1: एक्चुअली
0: प्रतिमा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: ये पसंद मेरी मम्मी की है, स्वप्न
0: जी
1: झरे फूल से नीत चुभे शूल से, वो
0: जी
1: है ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
0: ठीक। तो प्रतिमा जी, आपको आज हम सुनवाते हैं आपकी मम्मी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: स्वप्न झरे फूल से।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अंजू श्रीवास्तव बोल रही हूँ भोपाल से। बहुत
0: अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: दिनों से कोशिश कर रहे थे, अभी
0: जी।
1: जाके लगा है आपका कॉल। हाँ
0: देखिए, कोशिश रंग लाई ना, आपने कॉल लगाने की
1: जी,
0: कोशिश करी
1: हाँ
0: और
1: जी।
0: कॉल आपकी लग गई। ये बताइए अंजू जी कि भोपाल का कैसा मौसम है इस समय?
1: भोपाल का मौसम बहुत ही सुहाना है, चारों
0: जी
1: तरफ हरियाली, पानी और मतलब आंखों को बिल्कुल सुकून देने वाला मौसम है इस
0: क्या बात है,
1: टाइम।
0: यानी कि बारिश वहां पर भी खूब हो रही है।
1: बहुत हो रही है हम जी।
0: तो बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप
1: हाँ
0: साझा
1: जी,
0: कीजिए।
1: बहुत बहुत यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई, स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। हम लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है, तो
0: जी
1: मैं वहाँ पे हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़िया एक पास में जगह थी,
0: जी
1: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल पूरा।
0: जी

0: वहां जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग ने। बहुत अच्छा मौसम वहां का भी रहता था, पूरी हरियाली और पहाड़ियां।
1: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद का समय होता है, तो कुछ शरारतें भी होती होंगी आपस में दोस्तों में।
0: हाँ जी हाँ, बहुत बातें होती रहती है।
1: और ये बताइए कि बारिश के समय में क्या क्या आप सावधानियां रखती हैं, जैसे बाहर जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, तो क्या खास बातें ध्यान रखती हैं?
0: बस ये साफ सफाई का और अच्छी जगह खाना, मेन तो साफ सफाई का है बहुत ध्यान रखने का।
1: इस समय आप क्या शौक रखती हैं?
0: मतलब मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है और अभी आज भी वो शौक बरकरार है मेरी। मतलब बचपन की फ्रेंड, अभी तक हम लोग सब ग्रुप है तो
1: जी,
0: हर बार मिलते हैं, 3-4 साल में मिलते हैं पर मिलते हैं, या
1: क्या
0: कभी
1: बात
0: कभी
1: है,
0: कुछ लोगों से 1 साल में मिलना हो जाता है
1: बहुत अच्छा
0: ऐसा।
1: लगा सुनकर कि आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं।
0: मेरा एक तो म्यूजिक का मुझे थोड़ा सा शौक है तो
1: जी
0: ये म्यूजिक वाले प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ।
1: जी
0: मतलब पूरी फैमिली को हमारे म्यूजिक का शौक है। मेरा गेम्स था पहला
1: जी
0: स्कूल टाइम में, कॉलेज तक मैंने मतलब 5th क्लास से मैंने जो बास्केटबॉल खेला है तो स्टेट लेवल तक खेला हुआ है मेरा, नेशनल में तक पहुंच गई थी मैं, तो
1: जी जी जी
0: बहुत खेला। मतलब मेरा पैशन था, वो पैशन था कि मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है और वो ही मैंने एक ही गेम चुना और उसको लास्ट तक
1: जी
0: स्कूल पूरा कॉलेज पूरा वो खेला।
1: क्या बात है, यानी गेम्स के प्रति, वो भी बास्केटबॉल खेलने में तो बड़ा मजा आता है, और कभी जब बारिश होती तो ये गेम तो और भी अच्छा लगता होगा खेलने
0: और
1: में।
0: भी अच्छा लगता जी।
1: तो अंजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: आज मैं टिप टिप बरसा पानी सुनना पसंद करूंगी
1: तो अंजू जी, आज आपको
0: आपसे
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं सरिता बोल रही हूँ पुणे से।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैंने बचपन से आज तक रेडियो ही सुने
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: ज्यादा।
0: तो रेडियो आप सुबह से लेकर रात तक सुनती हैं, तो आपको कौन से प्रोग्राम रेडियो के अच्छे लगते हैं?
1: सब सारे प्रोग्राम उनको बहुत पसंद है,
0: क्या
1: जैसे
0: बात
1: गीत
0: है,
1: माला हुआ, फिर छाया गीत, हेलो फरमाए, चलो सहेली।
0: जी तो ये
1: हाँ,
0: बताइए कि और आपको क्या पसंद है?
1: हमको जितना कला है सब पसंद है, चाहे ड्राइंग हो, गीत संगीत, नृत्य,
0: जी
1: सिनेमा देखना, ये सब चीज, रेडियो सुनना, सब चीज पसंद है।
0: तो आप ड्राइंग भी
1: कला के फैन
0: कला के फैन हैं, क्या बात है जी। कला तो बहुत अनंत होती है,
1: हाँ
0: उसकी कोई
1: वो है।
0: सीमा नहीं, हर चीज में कला आपको नजर आती होगी, है ना
1: हाँ, ये
0: जी।
1: बात है। हाँ,
0: तो ये बताइए, बारिश जब होती है तो उसमें आपको कैसा लगता है?
1: अरे बारिश का तो पूछो मत। हम तो मैंने बचपन में बारिश जब होती थी तो उसका बैठ के और फोटो बनाते थे अपने से, बिना
0: अच्छा
1: सीखे ही बहुत बनाते थे, और बहुत हमको बारिश में भीगना, नहाना सब बहुत पसंद।
0: क्या बात है,
1: बारिश देखना भी बहुत पसंद है, ऐसे अभी बालकोनी में बैठ के बारिश देखना। अभी तो पुणे में बहुत बारिश हो रही है तो
0: जी जी जी
1: मेरे बालकोनी से दिखता है।
0: और बताइए, और क्या शौक है आपके?
1: और बस सबको खिलाना, सबसे बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना,
0: जी,
1: बस यही सब मेरा शौक है।
0: क्या चीज खिलाना पसंद करती हैं? आपको क्या
1: सब
0: पसंद
1: चीज,
0: है, क्या
1: सब
0: बनाए?
1: नहीं, खाना हम अच्छा बनाते हैं, और तरह तरह जो भी बनाते हैं वो किसी को बुला के खिलाना,
0: क्या बात है,
1: ये सब मेरा शौक है कि भाई आए मेरे यहाँ, खाए, बैठे, गप्पे मारे।
0: जी। आज बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: तिलक मंदिर फिल्म का,
0: जी
1: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं दिलिक मंदिर का ये
1: हाँ
0: प्यारा
1: ठीक है,
0: संगीत।
1: प्यार में सारा आलम हम खो बैठे।
0: क्या बात है, और यही सारा प्यार हमारा भी है आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं रतिका तिवारी हूँ, सूरत गुजरात से।
0: रसिका जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे फिल्मों के गीत सुनना बहुत पसंद है, और सखी सहेली
0: जी
1: और रेडियो सुनना, और उसमें खास तौर पे सखी सहेली मैं रोज सुनती हूँ
0: क्या बात है।
1: जी।
0: अच्छा ये बताइए रसिका जी कि बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: हाँ, बारिश का मौसम अच्छा लगता है, और आजकल तो बहुत बारिश हो ही रही है।
0: अच्छा क्या सावधानियां रखती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए क्या आप खास ध्यान रखती हैं कि कैसे वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें?
1: हाँ, बस ये है कि बारिश में ज्यादा बाहर, जब तक जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें,
0: जी
1: घर पे रहें।
0: जी
1: हाँ,
0: और बारिश में क्या-क्या चीजें बनाती हैं?
1: बारिश में हम लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बारिश आते ही सबको पकोड़े याद आ जाते हैं ना।
1: हाँ
0: मान लीजिए रसिका जी मेहमान आ गए और रसोई में आप गई और कुछ चीजें कम पड़ गई, तो फिर क्या आप जुगाड़ लगाती कि क्या चीज हम डाल दें और मिला दें जिससे अच्छी चीज बन जाए?
1: वैसे तो मैं ज्यादातर बेसन की बनाती हूँ पकौड़े,
0: जी
1: लेकिन अगर बेसन मान लीजिए कम है तो आटा मिला दिया, उसमें सूजी मिला दी
0: अच्छा,
1: इस
0: तो
1: तरह, और आलू प्याज ये सब कुछ सब्जी और डाल ली।
0: बहुत अच्छा लगा। और परिवार में आपके कौन कौन हैं?
1: परिवार में मेरी सास
0: जी
1: नंदी
0: जी
1: और मेरे पति, एक बेटा।
0: भरा पूरा परिवार है, बहुत अच्छा लगा सुन करके।
1: हाँ,
0: और बारिश का मौसम है तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
1: बारिश के मौसम में मुझे आज बरखा बहार आई।
0: परख मूवी का आपको ये गीत सुनना है तो
1: हाँ,
0: बहुत,
1: ये गीत
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

आज हेलो सहेली में सखियों ने की अपने मन की दिल की बातें, और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पसंद के गाने भी बताए जो सबने सुने और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब इस कार्यक्रम से विदा लेने की घड़ी करीब आ गई है, तो जाने से पहले ये आपको जानकारी नोट करा दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। कॉल करने के लिए नंबर्स जो है वो आप नोट कीजिए, फ़ोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी हिंदी में 4002466 2, एसटीडी है 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए 2867028 8, एसटीडी कोड है 022, यानी 2867028 8, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अगले मंगलवार हेलो सहेली में कीजिएगा फ़ोन, नई सहेली से दिलों की बातें कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार हेलो सहेली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। अपने फोन में लगा लीजिए टाइमर अलार्म, जिसे याद रहेगा। जिन सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो मन मायूस ना करें, वो अगली बार कॉल जरूर लगाएं। जिनकी कॉल आज लगी है वो 2 महीने तक कॉल नहीं करें। सखा भाइयों से विनती है वे कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि व्यस्त होंगी टेलीफोन्स की लाइनें। अपनी बातों को देते हैं विराम, हेलो सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के साथ, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक और भावना सिंदल ने, और संपादन सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहाँ बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहाँ बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।

इसी तरह उदास यश रोज वहाँ बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हो भाई, क्या मेरा खाना

आ गया। अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। हाँ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा? ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली, क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आँखें क्यों छीन ली, लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपसे क्या छिपा है, आँखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो, क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ, वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी, और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा।

उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नजर अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

बाल्यकाल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके

सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं। वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता। कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया, कुछ लोग ताना मारते। लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहाँ कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहाँ की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ यदि उस दिन वो निराशा में डूबकर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वह वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा, फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वो पुरानी बेंच, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य पुरावशेषों की सफल वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुरावशेषों की वापसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहर को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां भारत लौट चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता शाखाएं बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा का निर्माण किया गया है और अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद भवन परिसर में आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के दौरान निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। दिल्ली मंडल के रेवाड़ी दिल्ली और शाकुर बस्ती भटिंडा खंडों पर कवच प्रणाली का चौथा चरण लागू किया जाएगा। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र लोकोमोटिव के तय समय पर होने वाले सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचना स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कैच द रेन अभियान की गति को बनाए रखने के आह्वान किया था, जिसके बाद बालोद जिला जल संचयन जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने प्रस्तावित 8 वनों में से कम 20% वृक्षारोपण औषधीय पौधों की प्रजातियों के लिए समर्पित करने या 2 वनों को समर्पित औषधीय वनों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ विशेष श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ परिचर्चा प्रसारित होगी। ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आज शाम 5:10 पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। इसका पुनर्प्रसारण कल सुबह 9:10 पर होगा। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 101 रन बना लिए हैं। यह पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान महिला टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आज ब्रिटेन के आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़ेरेव और यानिक सिनर का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। कल कैरोलिना मखोवा और लिंडा नुस्कोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.4

4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। साथ ही आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। संध्याकालीन प्रसारण सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, अभी से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन प्रसारित होगा शाम 5:30 पर। 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन और ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आप सुनेंगे गांव घर

महिला भवनों का कार्यक्रम घर आंगन प्रसारित होगा शाम 5:30 पर। 6:05 आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन और ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आप सुनेंगे गांव घर शाम 6:10 पर। सांझ गीत भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:40 पर और गुड इवनिंग रोहतास ये सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा शाम 7:15 पर।

प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल के लिए हम आपको लेकर चलेंगे अपने आकाशवाणी के पटना केंद्र शाम 7:25 पर, और शाम 7:50 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद।

भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप सुन सकते हैं रात्रि 9 बजे, और बंदगी ख्वाजा एवं मन कबत पर आधारित ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण।

हिंदी एल्बम सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे, और चित्रपट तराने हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदन के अंतर्गत कुछ भक्ति संगीत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गणेश वंदना से।

तृप्ति शाक्या की आवाज़ में आप सुन रहे थे यह गणपति भजन। आइए अब आपको सुनवाते हैं अरविंद सिंह और प्रियंका मुखर्जी की आवाज़ों में श्री राम भजन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, वंदन कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं संगीता ग्रोवर की आवाज़ में एक देवी भजन।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम वंदन समाप्त हुआ। आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। सखियों, आज फिर से आपके साथ हैं इस रेडियो के सफ़र पर, और आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे साइबर अपराधों से कैसे रहें सुरक्षित। बढ़ते कदम में बातें करेंगे नई मंजिल अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कार्यक्रम, और चलते चलते मन की मजबूती पर, और साथ ही कार्यक्रम की बीच बीच में गीत और संगीत का आनंद भी लेंगे। सखियों, आजकल साइबर अपराध और ऑनलाइन अपराध के मामले बहुत बढ़ गए हैं। किसी भी ऑनलाइन अनजान कॉल लिंक या OTP, QR कोड, बैंक संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। आजकल के आधुनिक अपराधों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपना पर्सनल डेटा किसी के साथ साझा ना करें। अनजान नंबरों से आए संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें, और साथ ही सखियों, कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके असली और वेरीफाइड होने की पुष्टि ज़रूर कर लें। इससे बचने के लिए सखियों, अपने सभी अकाउंट्स के लिए कम से कम 10 से 12 अक्षरों वाले जटिल पासवर्ड का प्रयोग ज़रूर करें। किसी भी लॉटरी, भारी छूट या नौकरी के फर्जी संदेशों से बचें। अपने फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट के ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। अपने उपकरणों में हमेशा एक विश्वसनीय एंटीवायरस इंस्टॉल रखें और समय समय पर अपडेट करते रहें। सखियों, सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई का उपयोग करते समय संवेदनशील जानकारी का उपयोग ना करें। अगर कोई पुलिस अधिकारी, कस्टम अधिकारी या जांच एजेंसी बनकर वीडियो कॉल पर डराए और पैसों की मांग करे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। असली एजेंसियां कभी भी वीडियो कॉल पर पूछताछ या जुर्माना नहीं वसूलती हैं। सखियों, यदि आपके साथ किसी भी तरह की वित्तीय धोखाधड़ी जैसे बैंक अकाउंट या UPI से पैसे काटना या संदिग्ध कॉल जैसे पैसे की डिमांड ब्लैकमेल आती है, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और अपने परिवार व दोस्तों को भी जागरूक करें। आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। और इसी के साथ सखियों, और सुनते हैं अभिजीत और साथियों की आवाज़ में ये गीत। ये गीत फिल्म चलते चलते से लिया गया है। गीत हैं जावेद अख्तर जी की।

0: चैंपियन नहीं आए अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अभी हमने अभिजीत की आवाज में जो गीत सुना, ये गीत चलते चलते फिल्म से लिया गया था। सखियों नई मंजिल योजना भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एकीकृत शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम है, जिसके तहत अल्पसंख्यक

अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले युवाओं और महिलाओं को बुनियादी शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना में 30% सीटें विशेष रूप से अल्पसंख्यक लड़कियों और महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। सखियों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षा की कमी को पूरा करना, कौशल विकास और रोजगार के अवसर, मदरसों या सामान्य स्कूलों के बीच में पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से कक्षा 8वीं या 10वीं तक की औपचारिक शिक्षा और प्रमाण पत्र दिलाना है। बाजार की मांग के अनुसार आधुनिक क्षेत्रों जैसे आईटी, फूड प्रोसेसिंग, एम्ब्रॉयडरी, हॉस्पिटैलिटी में प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षित लाभार्थियों में से कम 70% को संगठित क्षेत्र में नौकरी यानी कि रोजगार दिलाना है। सखियों, इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए अभी तक देश के 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी या जैन से होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 17 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह व्यक्ति स्कूल छोड़ चुका हो या किसी पारंपरिक संस्थान जैसे मदरसे से पढ़ा हो जिसके पास औपचारिक स्कूल का सर्टिफिकेट ना हो। परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। सखियों, इस कार्यक्रम में महिलाओं को मिलने वाले लाभ आरक्षण यानी कि योजना के तहत कुल सीटों में से 35% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। हालांकि व्यवहारिक तौर पर इसमें महिलाओं की भागीदारी 42% से अधिक रही है। स्टाइपेंड यानी कि ट्रेनिंग कोर्स के दौरान महिला या पुरुष लाभार्थियों को मासिक या कोर्स आधारित आर्थिक भत्ता दिया जाता है। सखियों, इसके तहत महिलाओं को न केवल तकनीकी ज्ञान बल्कि सॉफ्ट स्किल्स, डिजिटल साक्षरता और जीवन जीने के कौशल भी सिखाए जाते हैं। यह योजना सरकार द्वारा सूचीबद्ध की गई कई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से देश के अलग अलग ज़िलों से चलाई जा रही है। और इसी के साथ सखियों, आइए सुनते हैं एक और गीत। आवाज़ें हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सखियों, अभी हमने जो गीत सुना उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, ये गीत फिल्म दिल मांगे मोर से लिया गया था। और अब आइए सखियों, बात करते हैं मन की मजबूती पर। सखियों, मन को मजबूत रखना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो हम हर छोटी बड़ी समस्या का सामना हंसते हंसते कर सकते हैं। सखियों, मन की मजबूती का मतलब ही है विपरीत या कैसी भी परिस्थिति हो, तनाव और असफलताओं के बावजूद खुद को शांत रखना और सही

फैसले लेना, यह कोई जन्मजात गुण नहीं है बल्कि एक हुनर है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। सबसे पहले तो अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण करना कितना भी कठिन समय हो, उसमें डूबने और डरने की बजाय खुद को संभाल के रखना मन की मजबूती है। दूसरा है सकारात्मक सोच। सखियों, हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक रखें, शिकायत करने के बजाय हल यानी कि समाधान ढूंढें। तीसरा है आत्मविश्वास। खुद की क्षमताओं और फैसलों पर भरोसा रखें और अपने आत्मविश्वास के साथ कोई कार्य करें और आगे बढ़ें। चौथा है परिस्थितियों को स्वीकारना। सखियों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नियंत्रण नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करना चाहिए, मन को मजबूत करके आगे बढ़ना चाहिए। सखियों, इसे मजबूत करने के लिए रोज़ाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, यह दिमाग को शांत रखता है। बदलाव से डरने की बजाय उसे सीखने और आगे बढ़ने का प्रयास करें। दूसरों की ज़िंदगी से अपनी तुलना करना बंद करें, क्योंकि यह मानसिक कमज़ोरी का बड़ा कारण बनता है। सखियों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम डगमगा जाते हैं, या कह सकते हैं कि डर जाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। इसके बजाय आप उसे सीखने और पूरी कोशिश करके खुद को साबित करें और आप सब कुछ कर सकती हैं। साथ ही सखियों, हमें अपनी पुरानी गलतियों और पछतावे में जीने के बजाय अपने वर्तमान में फोकस करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मन की मजबूती रातों रात नहीं आती हो सखियों, यह हमारे छोटे छोटे दैनिक अभ्यासों से आती है। रोज़ाना अच्छी नींद लें, पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम करें, और सबसे ज़रूरी और अहमियत खुद को दें और हमेशा खुश रहें। इससे हम अपनी मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। भगवान हर किसी को एक जैसा नहीं बनाया, इसलिए जो जैसा है बेहतर है। दूसरे को खुश करने के चक्कर में आप खुद को तकलीफ़ या नाखुश ना करें। खुद के लिए समय निकालें, जो भी शौक़ हो, अपना गाना सुनना, किताबें पढ़ना, लिखना, वो करें। अतीत में हुई गलतियों या किसी की भी कही कड़वी बात पर को बार बार याद ना करें। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आज को खूबसूरत बनाएं और हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ सखियों, आइए सुनते हैं चलते चलते एक और गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

सखियों, अभी हम सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत। ये गीत फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा से लिया गया था। सखियों, घड़ी की टिक टिक कर इशारा कर रही है कि अब हमारा समय हो गया है आपसे विदा लेने की। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी सखी सुनीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत।

आप सुन रहे थे मनोरंजन ओझा की आवाज़ में यह कृषि गीत। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। शाम के 6:05 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय ले भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,000 से बेसी लाभार्थियों के खातन में डीबीटी के माध्यम से पेंशन के पैसा ट्रांसफर कैले। श्री चौधरी पटना में आयोजित एगो कार्यक्रम से 1,423 करोड़ रुपया के राशि जारी कैले। योजना के 6 गो श्रेणी की हर एक लाभुक के 11,1100 रुपया के भुगतान कैल गेल। ए मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि सरकार सब योग्य लाभार्थियों के समय पर पेंशन

राशि उपलब्ध करावे के व्यवस्था पक्का कैले बिया ताकि ओखनी के जीवन यापन में मदद मिल सके। वो अधिकारी लोगन के निर्देश देले कि जोग लोगन के तुरंत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ल जाओ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और दोसर वरिष्ठ अधिकारी लोगन भी मौजूद रहलन। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन काल 2 दिना के बिहार दौरा पे आई हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बतौले कि उपराष्ट्रपति गया जी में 11 और

0: राधाकृष्णन काल 2 दिना के बिहार दौरा पे आई हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बतौले कि उपराष्ट्रपति गया जी में 11 और 12 जुलाई के आयोजित विधायक लोगन के प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन करी हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दूसर गणमान्य लोगन भी शामिल हुई हैं। डॉक्टर कुमार बतौले कि विधानसभा सचिवालय लोकसभा के प्रबोधन एवं प्रशिक्षण संस्थान और विपाड के साझा प्रयास से आयोजित यह कार्यक्रम में विधायक लोगन के संसदीय और विधायी काम के अलग अलग पहलुओं की ट्रेनिंग दिल जाये। राज्य में 3,035 ऐसा नियोजित शिक्षक मिलल बाड़े जे फर्जी शैक्षणिक और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पहले रहलन। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी जांच ब्यूरो शिक्षक लोगन के सर्टिफिकेट के जांच के काम पूरा कर ले बा। यह सब शिक्षक लोगन के बहाली साल 2006 से लेके 2015 के बीच भइल रहे। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करे के मामला में अब तक 1,830 FIR दर्ज हो चुकल बा। ए बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बतौले कि दोषी शिक्षक लोगन के सेवा समाप्त करे के प्रक्रिया शुरू कैल जा रहल बा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहले बाड़े कि शिक्षक लोगन के ट्रांसफर के विभागीय प्रक्रिया आज से शुरू हो गेल बिया। पटना में पत्रकार लोगन से बातचीत में वो कहले कि पहले विभागीय अधिकारी लोगन खातिर काल ट्रेनिंग हुई और ओकरा बाद शिक्षक लोगन के तबादला खातिर आवेदन के तारीख जारी कैल जाय। राज्य के सरकारी स्कूलन में मानसून के दौरान मध्यान्ह भोजन योजना के मेनू में बदलाव कैल गेल बा। शिक्षा विभाग लइकन के सेहत के ध्यान में रखत बरसात के मौसम में बैगन, भिंडी, पत्ता गोभी और इस साग के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दिले बा। विभाग सब जिला के जारी निर्देश में कहले बा कि इन्फेक्शन के खतरा के देखत यह सब सब्जियन के ताज़ा स्थानीय और मौसमी सब्जियन के इस्तेमाल कर जाओ। साथ ही मिड डे मील के क्वालिटी पक्का करे के खातिर जिला और ब्लॉक लेवल के अधिकारी लोगन के लगातार जाँच करे के आदेश दिल गई बा। भाजपा के वरिष्ठ नेतन आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में NDA के घटक दलन के बैठक भइल। बैठक में भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेतन, मंत्रियन, सांसदन, विधायकन, विधायक सारसदन और वरिष्ठ नेता लोगन भी शामिल भइलन। बैठक में सरकार के कार्यक्रम की समीक्षा, घटक दलन के बीच तालमेल तथा विकास योजनान पर मुख्य रूप से चर्चा कल गई। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के खातिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार अपन नामांकन वापस ले लिहले बाड़न। पटना पार्टी कार्यालय में संवाददाता ले बातचीत में कहले कि पारिवारिक कारण ले उपचुनाव ना लड़े के फैसला कैले बानी। गौरतलब बा कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा के कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा बा। नामांकन की अंतिम तारीख 13 जुलाई तक निर्धारित बा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कहले बाड़े कि अब की बार के पंचायत चुनाव में आरक्षण के नया रोस्टर लागू हुई। नालंदा में पत्रकार लोगन से बातचीत में वो कहले कि 10 साल पूरा होके के कारण चुनाव में आरक्षण के नया रोस्टर प्रभावी हुई। श्री प्रकाश कहले कि पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव पुरान व्यवस्था के मुताबिक अप्रत्यक्ष रूप से ही कैल जाए। आज भोजपुरी लोक संस्कृति आलोक भाका के अमर पुरोधा, जनकवि, लोक नाटककार, गीतकार और समाज सुधारक भिखारी ठाकुर के पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनावल जा रहा बा। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाए वाला भिखारी ठाकुर अपन कालजयी रचनन, विदेशिया, बेटी बेचवा, गोबर घिचोर जैसन नाटकन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीति, नारी पीड़ा और सामाजिक असमानता के मंच पे ले अलन। उनका रचनन आजो समाज के आईना मानल जा रहा बा। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही समाप्त भइल।
1: आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम के श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के प्रणाम। श्रोता सभे कार्यक्रम शुरू करे से पहले आई जान लिहल जाओ आज के कार्यक्रम में मिले वाला जानकारी के संबंध में। देखी आज कार्यक्रम के शुरुआत बतकही से हुई, विषय रही विश्व जनसंख्या दिवस पर। आज कार्यक्रम में मन मनसाइन खातिर लोकगीत सुनल जाई सुधा सिन्हा से। आज वार्ता के विषय बा जनसंख्या नियंत्रण आ बतैहन भूपेंद्र नारायण सिंह। एक जानकारी में आज बतकही के विषय होई कोई के भी आपन ओटीपी मत दी आ अंत में जायजा लिहल जाई मौसम के पूर्वानुमान के। लेकिन पहले आज के चर्चा देखी बढ़त जनसंख्या घटत संसाधन के बारे में। काल 11 जुलाई है आ 11 जुलाई के हमनी के मनाई ल जा विश्व जनसंख्या दिवस। बढ़त जनसंख्या के चलते बहुत सारा परेशानी भी पैदा हो जाला आ हमनी के संसाधन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाला। भारत दुनिया के सबसे बढ़न आबादी वाला देश है। बढ़त जनसंख्या अपना साथे बहुत तरह के चुनौती लेके आवेले। भोजन, पानी, भूमि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य आ रोजगार जैसन संसाधन सीमित बा, जबकि एकर मांग लगातार बढ़त जा रहल बा। आज शहरन में बढ़त भीड़, गांवन में खेती करे लायक भूमि के कम होना, भूजल स्तर के गिरना, जंगलन के कटाई आ प्रदूषण जैसन समस्या हमनी के संकेत देता कि यदि संसाधन के संतुलित उपयोग ना कैल जाई तो आवे वाला पीढ़ी के गंभीर कठिनाई के सामना करे के पड़ सकेला। आ देखी कृषि के क्षेत्र भी एकरा से अछूता नहीं है। बढ़त आबादी के चलते भोजन के मांग बढ़ रहल बा, मतलब खाद्यान्न के मांग बढ़ रहल बा, लेकिन खेती के जमीन धीरे धीरे कम होत जा रहल बा। ऐसन स्थिति में किसान भाई लोग के आधुनिक तकनीक के अपनावे के पड़ता। पानी के बचत करे वाला सिंचाई प्रणाली, उन्नत बीज, फसल विविधीकरण आ प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण समय के बहुत बड़ आवश्यकता बा। आ जब जनसंख्या बढ़ रहल बा तो जल संरक्षण भी बेहद जरूरी बा। वर्षा जल संचयन, तालाब के संरक्षण आ पानी के सोच समझ के उपयोग हमनी के जल संकट से बचा सकेला। यही तरह से बिजली के बचत, पौधारोपण आ प्लास्टिक के कम उपयोग भी संसाधन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेलन। आ देखी बढ़त जनसंख्या के चुनौती के समाधान खातिर सरकार के प्रयास से खाली संभव नहीं है। एकरा खातिर हर आदमी के, हर नागरिक के जिम्मेदारी भी उतने महत्वपूर्ण बा। परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता, शिक्षा के प्रसार, विशेषकर महिला के शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान, समाज के एगो संतुलित आ समृद्ध भविष्य के ओर ले जाई। तो आई विश्व जनसंख्या दिवस के पूर्व संध्या पर

हमने के एगो संकल्प लिहल जाओ कि जनसंख्या नियंत्रण के साथे साथ प्राकृतिक संसाधनन के विवेक के साथ उपयोग कैल जाए, पानी आ ऊर्जा के बचत कैल जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगावल जाए आ आवे वाला पीढ़ी खातिर एगो सुरक्षित आ समृद्ध पर्यावरण के निर्माण कैल जाए। श्रोता सभे, ई तरह हमने के बत कही बढ़त जनसंख्या आ घटत संसाधनन पर, बत कही अबे और आगे भी होई, लेकिन एह बीच में कुछ मन मनसाइन कर लिहल जाओ आ सुनल जाओ एगो लोकगीत कलाकार बानी सुधा सिन्हा, तो आई सुने के।

0: देखी श्रोता सभे बिजली चमके बदरिया बरसे, कतना बढ़िया बरसाती गीत सुधा सिन्हा जी सुनौली। एक गीत खातिर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। आ कार्यक्रम में हमने के आगे भी बहुत सारा जानकारी लिहल जाई, लेकिन उससे पहले सुन लिहल जाओ कुछ संदेश, आई सुने के।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देही ओके बुलंदियन के पांख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
0: देखी एह अंतराल के बाद एक बार फिर से रुवा सभे के स्वागत बा एक कार्यक्रम में। आई जब जनसंख्या बढ़ रहल बा, ओकरा से परेशानी हो रहल बा, तो एकर बात जब चल रहल बा तो सुनल जाओ एगो वार्ता जनसंख्या नियंत्रण विषय पर। वार्ताकार बनन भूपेंद्र नारायण सिंह।
3: विश्व के पैमाने पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है। भारत की ताज़ा गणना रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या 1,10,00,000,000 को पार कर चुकी है। जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, संसाधन काफ़ी पीछे रह जाते हैं। फलस्वरूप देश की अधिकांश आबादी अभाव में जीने को विवश है। भारत गाँवों का देश है और विकासशील होने के बावजूद लगभग 70% आबादी गाँव में बसती है। जाहिर है कि जनसंख्या वृद्धि में गाँव में औसतन ज़्यादा हो रही है। ग्रामीण परिवेश में आज भी साक्षरता की दर काफ़ी कम है। कृषि, मजदूरी अथवा छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। अशिक्षित होने के कारण लोग जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं के प्रति लापरवाह हैं। हालांकि सरकारी तौर पर प्रत्येक उम्र के पुरुष, स्त्री एवं बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त पारंपरिक अवधारणाएं इसमें बाधक बन रही हैं। लोगों के बीच शिक्षा से ज़्यादा महत्व घर चलाने को दिया जाता है। अधिक से अधिक आमदनी को प्रमुखता देते हुए आबादी वृद्धि को उसका आधार मान लिया जाता है। परिवार में ज़्यादा सदस्य होंगे तो अधिक कमाई करेंगे, ऐसी सोच से जनसंख्या वृद्धि होती चली जा रही है। जबकि आज के इस वैज्ञानिक युग में संख्या बल से अधिक महत्व शिक्षित युवा वर्ग को दिया जा रहा है। अगर घर में एक ही युवा हो और शिक्षा प्राप्त कर ले तो पूरे परिवार का भरण पोषण हो सकता है। परिवार में अधिक संख्या में लोगों का होना आज के युग में आवश्यक नहीं है। परिवार में जितने लोग बढ़ेंगे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बोझ बढ़ेगा, नतीजा उनका विकास ठप हो जाएगा और गरीबी की मार झेलनी पड़ेगी। भारत में आदिकाल से गृह में पुत्र का होना पारंपरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधारणा को लेकर एक पुत्र की आशा में कई पुत्रियां जन्म ले लेती हैं। परिवार का आर्थिक पक्ष इससे काफ़ी प्रभावित हो जाता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।

और फिर वही वंशानुक्रम चल पड़ता है। आज बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं और किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं है। इसलिए स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां सफलता प्राप्त कर रही हैं। पारंपरिक अवधारणा और रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर बेटा और बेटी के फर्क को पाटना नितांत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता आज भी रूढ़िवादी विचार से ऊपर नहीं निकल पा रही है। हालांकि सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन को लेकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन हो रहा है, इसके बावजूद संतान उत्पत्ति को दैवीय आशीर्वाद मानते हुए लोग उसे अपनाने से पिछड़ रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों तक गर्भ निरोधक वस्तुओं की उपलब्धता सरकार द्वारा निःशुल्क कराई जा रही है, लेकिन उसके उपयोग को लेकर अशिक्षित वर्ग में तरह तरह की भ्रांतियाँ व्याप्त हैं। फलस्वरूप इससे वंचित होकर एक बड़ी आबादी जनसंख्या वृद्धि में निरंतर अपनी भूमिका अदा कर रही है। कुछ वर्ग के लोग गर्भ निरोधक अथवा परिवार नियोजन अपनाने को लेकर धार्मिक मान्यताओं को आगे खड़ा कर देते हैं। उनके मुताबिक परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाना धर्म के विरुद्ध जाता है और ऐसा करने से उनके इष्ट देव नाराज हो जाएंगे, ऐसी सोच विकसित की जाती है। ऐसी काल्पनिक बातों को फैलाकर एक बड़ी आबादी इन कल्याणकारी योजनाओं से खुद को अलग रखती है। फलस्वरूप इनकी आबादी तेजी से बढ़ती चली जा रही है और गरीबी की मार को झेलते हुए लोग बेरोजगारी तथा आपराधिक चरित्र के शिकार होते चले जा रहे हैं। इन सब रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर देश की मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए तथा जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों पर विचार करना चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। भारत जैसे विकासशील देश के प्रबुद्ध नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि भविष्य के प्रति अनजान एवं लापरवाह लोगों को जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं व चलवाएं। भले ही सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन अथवा गर्भ निरोधक कार्यक्रम निःशुल्क चलाए जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों का झुकाव उस ओर नहीं है। भले ही उनके बीच अशिक्षा, रूढ़िवादी सोच, लापरवाही, बहुवंशवाद जैसी सोच घर कर रही हो, लेकिन उनके बीच ईमानदार प्रयास कालांतर में अवश्य अपना रंग दिखाएगा। आम लोगों के बीच अभी भी इस जानकारी का अभाव है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अथवा सरकार द्वारा नामित स्वास्थ्य केंद्रों पर नसबंदी कराने वालों पुरुषों अथवा बंध्याकरण कराने वाली महिलाओं को नगद राशि देने का प्रावधान किया गया है। पुरुषों में यह भ्रांति है कि नसबंदी कराने के बाद उनकी पौरुष क्षमता समाप्त हो जाती है, साथ ही शरीर में कमजोरी आ जाती है। यह बिल्कुल गलत संदेश है और नसबंदी के बाद पुरुष की सेहत में कोई भी फर्क नहीं आता। अधिकांश पुरुष यह विचार रखते हैं कि केवल महिलाओं को ही वंध्याकरण का दायित्व है, जो कि अत्यंत शोचनीय है। जनसंख्या नियंत्रण में पुरुषों की सहभागिता महिलाओं से ज़्यादा होनी चाहिए, यह विचार विकसित करने की ज़रूरत है। गरीबी एवं अशिक्षा की चक्की में पिस रही आबादी काफ़ी कम उम्र में ही बेटियों की शादी करके निश्चिंत हो जाना चाहती है। शरीर और मन दोनों से अपरिपक्व दंपति जब तक समझदार होते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। 14-15 वर्ष की आयु में विवाह हो जाने से 25 वर्ष की उम्र होते होते वे 4-5 बच्चों के माता पिता हो चुके होते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं होता और फिर से एक पीढ़ी मुफलिसी की भेंट चढ़ चुकी होती है। कम उम्र में विवाह की परंपरा नितांत बकवास है और इससे हर हाल में बचने की ज़रूरत है। प्रबुद्धजनों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं प्रत्येक जागरूक नागरिकों को बाल विवाह अथवा अवयस्कों की शादी जैसी क्रियाकलापों को रोकने में आगे आना चाहिए। बेटी की 18 वर्ष और बेटे की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए जब उनकी शादी हो रही हो। इससे कम उम्र की शादी को कानूनी रूप से जुर्म माना गया है, लेकिन जागरूकता

0: के अभाव में ऐसी शादियां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः देखी जाती हैं, जहां अशिक्षा एवं गरीबी ने पूर्व से ही अपना डेरा डाल रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जानकारी देने और लोगों को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराने में जब तक आम जन सहभागी नहीं होंगे, तब तक यह समस्या बढ़ती ही जाएगी। चाहे पारंपरिक अवधारणाएँ हों, धार्मिक मान्यताएँ हों अथवा रूढ़िवादी सोच, अगर इनकी समाप्ति के लिए ईमानदार प्रयास हो तो देश की सबसे बड़ी इस समस्या पर निस्संदेह काबू पाया जा सकता है। केवल सरकारी प्रयासों व कार्यक्रमों के भरोसे इस समस्या का निदान संभव नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। यदि हम खुद आधा दर्जन बच्चों के पिता हैं, तो फिर मेरा पड़ोसी जनसंख्या नियंत्रण की सलाह मेरे द्वारा क्यों मानेगा? हमें तो खुद से इसकी शुरुआत करनी होगी, स्वयं के परिवार में इसे अपना कर दिखाना होगा, तभी समाज और गांव इसे अपनाएगा। जब एक एक नागरिक जनसंख्या नियंत्रण के मूल मंत्र को समझकर इसे स्वीकार करेंगे, तभी इस भीषण समस्या से निजात मिल सकेगी। सुरसा के मुँह की भांति लगातार बढ़ती जा रही जनसंख्या विस्फोट को रोकने में प्रत्येक पुरुष और महिला को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना होगा और उसमें सहभागी बनना होगा, तभी हम जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं।
1: देखिए श्रोता सभी, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भूपेंद्र नारायण सिंह कितना उपयोगी जानकारी देलन, ये जानकारी खातिर इनका के बहुत बहुत धन्यवाद। आई जानकारी के बात एगो बड़ा महत्वपूर्ण विषय बा, साइबर ठगी। कहें कि एकरा से बहुत आदमी रोज परेशान बन, एकरा से बचे खातिर एगो सबसे बड़ चीज ही बा कि अनजान आदमी से मोबाइल पर बात नहीं करे के, आ कौनो आदमी के OTP मत बताई। काहे कि आजकल बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, मोबाइल रिचार्ज, सरकारी योजना आ डिजिटल भुगतान के चलन तेजी से बढ़ रहा बा। ए सुविधा के साथे साइबर ठग भी नया नया तरीका अपनावत बाड़े। जब रउआ मोबाइल पर बैंक, UPI, ATM, आधार चाहे दूसरा सेवा से जुड़ल OTP जना के वन टाइम पासवर्ड कहल जाला उ आवेला, तो याद रखी ई OTP खाली रउआ खातिर होला, ई बांटे के चीज ना है। ई OTP रउआ मोबाइल पर आवेला, ई खाली राउर ह, एके कोनो हालत में काहे ना होखे दूसर आदमी से साझा मत करी। अक्सर ठग बैंक अधिकारी, पुलिस, बिजली विभाग, गैस एजेंसी, कुरियर कंपनी, लॉटरी चाहे सरकारी कर्मचारी बन के फोन करेला। उ कहेला कि राउर खाता बंद हो जाई, KYC अपडेट कराई, इनाम मिलल बा, बड़का बड़का गाड़ी पड़ल बा, बिजली कट जाई, फिर रउआ से OTP मांगेला। आ जैसे ही रउआ OTP बताइब, ठग रउआ खाता से, बैंक के खाता से सब पैसा उड़ा लेहन। ऐसे कौनो फेर में मत पड़ी। आ एक बात और याद रखे काम बा कि बैंक होखे, रिजर्व बैंक होखे, सरकारी विभाग होखे या कौनो असली संस्था होखे, फोन पर कबहूँ रउआ से OTP, ATM पिन, CCV नंबर आ चाहे UPI पिन ना मांगे। अगर ऐसा फोन

या मैसेज आवे तो घबराई मत, फोन काट दी। मैसेज पर भरोसा मत करी आ कौनो लिंक पर क्लिक मत करी। कई बार होला कि लिंक भेजता नहीं, डाउनलोड कर दी ऐप, तो कौनो लिंक पर क्लिक मत करी। जरूरत पड़े तो सीधे अपना बैंक के आधिकारिक हेल्पलाइन पर संपर्क करी। अगर गलती से कौनो तरह के ठगी हो जाए तो बिना देर कहले 1930 यानी 1930 इस साइबर हेल्प है, ये हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई और नज़दीकी साइबर थाना में जाके जानकारी दी। जल्दी कार्रवाई से जौन रुवा संगे ठगी भइल बा वो पैसा वापस मिले के संभावना बढ़ जाला। तो कम से कम आज भी हमने के अगर चेतल जाए तो बहुत कुछ बच सकेला। आई हमने के एक तरह से संकल्प ले लिया जाओ कि न खुद OTP बताइब, ना अपना परिवार पड़ोसी आ दोस्त लोग के बतावे देव। सतर्क रही, सुरक्षित रही आ साइबर ठगन से अपना मेहनत के कमाई बचाई। तो श्रोता सभे इत रहल आज हमने के बत कही, OTP कोई के मत बताई। अब आई हमने के मौसम पूर्वानुमान के बारे में बतिया लिया जाओ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 जुलाई तक रोहतास आ कैमूर जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले आ हल्का से मध्यम वर्षा होके के अनुमान बा। अधिकतम तापमान यह दौरान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% आ दोपहरिया में 50 से 55% रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान के अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चले के अनुमान बा। आ देखी आंधी तेज हवा आ वर्षा से फसल के नुकसान, फल फूल झड़ना, कीट रोग के प्रकोप, सब्जी या बागवानी फसल के क्षति पहुँच सकेला, पशुओं पर भी तनाव बढ़ सकेला। तो ऐसे अपने भी सुरक्षित रहें, पशु के भी सुरक्षित रखी आप फसल के भी सुरक्षा पर ध्यान दें। यही के साथ हमने के आज के एक कार्यक्रम के समय और आ गई बेरा हो गई श्रोता भाई बहन लोग से विदा लेबे के। एक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहन संतोष कुमार। तो चलत चलत ले सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के राम राम।

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। आइए कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं शब्बीर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ों में पिया के गांव फिल्म का एक गीत। गीतकार डॉक्टर रामनाथ पाठक और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बिहारी बाबू से। आवाज़ें हैं सुरेश वाडेकर और अलका याग्निक की। गीत है ब्रजकिशोर दुबे का और एक बार पुनः संगीतकार चित्रगुप्त।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
0: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।

आप सुन रहे थे आशा भोसले को, फिल्म था पिया निर्मोहिया, रचना लक्ष्मण शाहबादी की थी और संगीत था श्याम सागर का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की ही आवाज़ों में। फिल्म है बलम परदेसिया, गीतकार अनजान, संगीतकार चित्रगुप्त।

देख तू एक बेरिया, हंसी के देख

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आपने सुना आशा भोसले को, फिल्म था गंगा किनारे मोरा गांव, रचना लक्ष्मण साहब आदि की और संगीत था चित्रगुप्त का। आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं सांझ गीत के अंतर्गत कुछ भोजपुरी फिल्मों के गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म है लागी नहीं छूटे रामा का गीत, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार चित्रगुप्त।

आप सुन रहे थे सुरेश बाडकर और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म दुल्हा गंगा पार का यह गीत। गीत और संगीत लक्ष्मण शाहबादी का था। इसी गीत के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है स्थानीय गतिविधियों पर आधारित सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

श्रोताओं, आइए जान लेते हैं कुछ स्थानीय गतिविधियों की जानकारी। जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में आज जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक ले जाना है। जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इन मुलाकातों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और विकास योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाया जा सकेगा।

बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी 6 प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत माह जून 2026 की पेंशन राशि का लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ का अंतरण यानी DBT के माध्यम से हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी द्वारा आज किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सभी जिला मुख्यालय में किया गया। रोहतास जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के DRDA सभागार में आयोजित लाइव कार्यक्रम में जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र, उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं के 50 लाभार्थी उपस्थित रहे।

स्थानीय गतिविधियों में अगली जानकारी है। आज दिनांक 10/7/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास दीपक कुमार मिश्र के द्वारा सबका सम्मान जीवन आसान के तहत समाहरणालय स्थित DRDA सभागार में जिला जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुँचे लोगों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जिला पदाधिकारी ने एक एक आवेदक से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अगली गतिविधि है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत यूटिलिटी नेतृत्व समेकन यानी ULA स्कीम की प्रगति एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से आज मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत अब तक की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए नवंबर 2026 तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने जिले को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए तथा विभागीय समन्वय और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया।

आज मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में SWM रूल्स 2026 MRF कंपोस्ट प्लांट अमृत 2.0 STP एवं नमामि गंगे परियोजना के प्रगति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक किया गया। बैठक में जिलाधिकारी रोहतास, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम सासाराम एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पद पर चयन हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई 2026 को रोहतास जिले में एकल पाली में किया जाएगा। परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज जिला पदाधिकारी रोहतास दीपक कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास श्री रोशन कुमार ने समाहरणालय स्थित DRDA सभागार में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं सभी केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक कर ब्रीफिंग की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जिला पदाधिकारी रोहतास दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त रोहतास के अतिरिक्त जिला स्तरीय बैंकों के पदाधिकारी उपस्थित हुए। विदित हो कि पूर्व वर्ष की भांति इस वित्तीय वर्ष में भी इस योजना में कुल 339 लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अभी तक विभिन्न बैंकों द्वारा मात्र 12 ऋण आवेदन की स्वीकृति एवं 3 आवेदनों का भुगतान किया गया है। इस धीमी प्रगति पर जिला पदाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा सभी बैंकों के जिला समन्वयक एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक PNB रोहतास को निर्देश दिया गया कि वे ससमय लक्ष्य पूरा करना सुनिश्चित करें। आज ही जिलाधिकारी रोहतास दीपक कुमार मिश्र ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति एवं गुणवत्ता की विस्तृत समीक्षा की। जिले में सहयोग पोर्टल पर अब तक कुल 9,382 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 8,128 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, 967 आवेदन लंबित हैं तथा 2,287 आवेदन नियमानुसार अस्वीकृत किए गए हैं। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न आवेदनों का विवरण एवं स्वयं पोर्टल पर देखकर उनके निष्पादन की गुणवत्ता का बारीकी से परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि केवल आवेदनों का निष्पादन कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो ये था स्थानीय गतिविधियों की जानकारी। इसी के साथ स्थानीय गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास संपन्न होता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे स्थानीय गतिविधियों पर आधारित सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। शाम के 7:25 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल आकाशवाणी के पटना केंद्र से, जिसे हम अपने केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना

शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने नामांकन वापस लिया। पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को बनाया नया उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। गया जी में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की। और राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 3035 शिक्षक चिन्हित। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, ऐसे शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। अब समाचार विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। पटना में पार्टी प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।
1: मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
0: इस बीच भाजपा ने उपचुनाव में नीरज कुमार सिन्हा को नया

0: उम्मीदवार बनाया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।
1: मैं शुरू से मैं बूथ मंत्री बना, बूथ अध्यक्ष बना, महामंत्री बना और मैं दो बार से मंडल अध्यक्ष रहा और जिला उपाध्यक्ष का भी कार्य मैं युवा मोर्चा में किया हूँ। जीत तो बहुत जबरदस्त होने जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और हमारे आम जनता हम लोग बांकीपुर नमन को बहुत बहुत आशीर्वाद देने जा रही है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनके कार्य को देख करते हुए आज ये लोग यहाँ पे देंगे।
0: गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई तक निर्धारित है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक में भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में सरकार के कार्यों की समीक्षा, घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। भाजपा के श्रेयसी सिंह ने बताया कि बैठक में राज्य के विकास पर भी चर्चा हुई
2: और निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक बैठक थी। किस तरह से बिहार के विकास को सरकार और संगठन के समन्वय को बनाया जाए।
0: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और मंत्री संजय सिंह ने बताया कि बैठक में जिले के प्रभारी मंत्रियों को एनडीए के घटक दलों के जिलाध्यक्षों के साथ महीने में एक बार बैठक करने को कहा गया।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग जितने भी सहयोग शिविर सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं उसमें तमाम जिलाध्यक्षों को कहा है कि आप लोग अपने तरफ से सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम हो। वहीं उन्होंने माननीय मंत्री को कहा है कि जब आप जितने प्रभारी मंत्री हैं आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो आप लोग भी अपने जो जिलाध्यक्ष जी हैं, एनडीए के जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके साथ बैठे और वहां की उनकी जो समस्याएं हैं, जो सहयोग शिविर में नहीं हो पाती है उसके ऊपर की जो समस्या है उसको आप लोग समाधान करने का काम करें। उसके बावजूद अगर नहीं होता है तो जो संबंधित पदाधिकारी हो उनको बुलाकर आप लोग निर्देश।
0: बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। उपराष्ट्रपति डॉ सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति कयाची में विधायकों के लिए आयोजित हो रहे 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। डॉ कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय, लोकसभा के प्रबोधन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा बिपार्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायकों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
4: माननीय सदस्यों को संसदीय कार्य प्रणाली विभिन्न पहलुओं विषय पर विशेषज्ञों द्वारा, एक्सपर्ट जो हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। इससे संसदीय प्रक्रिया एवं नियम, सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य, आचार संहिता, प्रश्नकाल एवं कार्यपालिका की जवाबदेही, आधुनिक तकनीक एवं ई लेभा का उपयोग, विधायी तथा बजटीय प्रक्रिया, विशेषाधिकार का प्रोटोकॉल तथा संसदीय समितियों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल।
0: उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि अंतरित की। श्री चौधरी ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम से 1,423 करोड़ रुपए की राशि जारी की। योजना की 6 श्रेणियों के प्रत्येक लाभुकों को 1,100 रुपए का भुगतान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की है ताकि उनके जीवन यापन में सहायता मिल सके।
5: महीने में 2 सहयोग कार्यक्रम आपके हो रहे हैं, साथ ही साथ पंचायत विकास शिविर भी होते हैं। इन तीनों कार्यक्रम में एकदम हर हालत में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करे, सैनिटाइज करे, पंचायत में जो बैठक हो उसमें भी लोगों से पूछे कि कौन लोग छूट गए हैं जिनको पेंशन देने की जरूरत है। सबके बैंक अकाउंट को जोड़कर सभी दिव्यांगजन, विधवा बने और हमारे जो वृद्ध जन है, 10 तारीख के आपके अकाउंट

0: अकाउंट में राशि जानी है, यह सरकार के तरफ से तय है।
1: कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि इस बार के पंचायत चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। नालंदा में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि 10 साल पूरे होने के कारण चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर प्रभावी होगा। श्री प्रकाश ने कहा कि पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से ही सम्पन्न होगा।
2: सभी 6 पदों के लिए चुनाव होना है। मैं सभी पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, 6 अलग अलग बैलेट यूनिट रहेंगे, तो चुनाव की प्रक्रिया भी सरल होगी। लोगों को सहूलियत भी होगा, वोट देंगे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनेगा, पारदर्शी बनेगा और किसी की गलती के लिए गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये नया लेखन मिलेगा, साथ ही साथ आरक्षण के रोस्टर लागू हुए और आरक्षण का रोस्टर भी इस बार लगा है। इस तरीके से होता है, अभी वही वैसे ही होगा। इसके लिए अगर
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में 3035 ऐसे नियोजित शिक्षक चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने फर्जी शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर निगरानी जांच ब्यूरो ने शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन सभी शिक्षकों का नियोजन वर्ष 2006 से लेकर 2015 के बीच हुआ था। इस मामले में अब तक 1830 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि दोषी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
1: निगरानी विभाग ने इस जांच को कंक्लूड किया है और ये पाया है कि 3000 से अधिक शिक्षक इसमें दोषी पाए गए हैं जिनकी फर्जी डिग्रियां थी। हमने अपने विभागीय अधिकारियों को ये कहा है कि पूरी तरह से और कड़ा एक्शन के साथ इसका प्रस्ताव बनाया जाए और शिक्षा विभाग ऐसी कार्रवाई करे कि आगे से कोई इस प्रकार का हिम्मत नहीं जुटाए। और दूसरी बात कि आगे से जितनी भी बहालियां होंगी उन सभी लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच पहले हो, ऐसी व्यवस्था करें। और अभी भी जांच पेंडिंग है, सारे विषयों की जांच होगी और सब पे कार्रवाई होगी। कोई भी फर्जीवाड़ा को बर्दाश्त शिक्षा विभाग नहीं करेगा।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण की विभागीय प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के लिए कल प्रशिक्षण होगा और उसके बाद शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन की तिथि जारी की जाएगी।
1: विभागीय प्रक्रिया ऐसे शुरू हो रही है डिजिटल, पूरी तरह से ऑनलाइन। वो हमारा ई शिक्षा कोर्स का कल ट्रेनिंग होगा, बिहार के सभी अधिकारी उससे जुड़ेंगे। उनको यहाँ से जो एक्सपर्ट हैं हमारे विभाग के, वो पूरा तरह से उनको ट्रेनिंग देंगे कि इस प्रकार से आपको इसका ऑपरेशन करना है, क्योंकि पारदर्शिता के साथ शिक्षकों के ट्रांसफर एक मापदंड के आधार पर करना। और इसके लिए आपको डेट आएगा, उस डेट में सभी शिक्षक आवेदन देंगे और उसके बाद प्रक्रिया के अधीन उनका ट्रांसफर।
0: प्रदेश में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सभी प्रारंभिक स्वीकृतियों को अगले एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित चार परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में बांका के भेतिया और शंभूगंज तथा सिवान का तरोली शामिल है। तकनीकी कारणों से फिलहाल नवादा के रजौली को निर्धारित लक्ष्य से बाहर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित चार परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थलों की तकनीकी स्थिति, भूमि और जल उपलब्धता की समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि अगले 12 महीनों के भीतर भूमि, जल आवंटन, बोरहोल ड्रिलिंग की अनुमति और अन्य आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए ताकि

0: परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति ली जा सके। समीक्षा के दौरान ये बताया गया कि नवादा के रजौली के निकट चिन्हित स्थल परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है, इसी वजह से इस स्थल को परियोजना से बाहर कर दिया गया है। बैठक में ये जानकारी दी गई कि दो दो 700 मेगावाट क्षमता वाले प्रत्येक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए लगभग 1000 एकड़ भूमि और प्रतिवर्ष 80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी। उपयोग के बाद रीसाइकिल्ड और रेडिएशन फ्री जल का उपयोग सिंचाई सहित अन्य कार्यों में किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से निधिश्री।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि बेगूसराय के सिमरिया 6 लेन पुल पर एक्सपेंशन ज्वाइंट के तकनीकी अनुरक्षण का कार्य प्रगति पर है। मंत्रालय के अनुसार अनुरक्षण कार्य के दौरान पुल पर यातायात सामान्य रूप से जारी है और यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड में रिकॉर्ड 195.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सिवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के अधिकांश स्थानों पर, उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा 26 जुलाई को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने नामांकन वापस लिया। पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को बनाया नया उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। गया जी में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की। और राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 3035 शिक्षक चिन्हित। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, ऐसे शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
1: रोहतास जिले में मानसून सक्रिय है, जिससे जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के झरनों और पहाड़ी नालों में अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने पर्यटकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। लोगों से जोखिम वाले स्थानों पर न जाने तथा रील और सेल्फी बनाने से बचने की अपील की गई है। इधर जिले में खरीफ मौसम के तहत धान की रोपनी ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला कृषि पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने बताया कि इस वर्ष करीब 2,07,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। अब तक लगभग 10% रोपनी पूरी हो चुकी है। श्रावण मास में जिले के प्रसिद्ध गुप्ता धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। धाम परिसर और गुफा क्षेत्र में बैरिकेडिंग, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम, पर्याप्त ऑक्सीजन, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इधर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत शेरशाह सूरी मकबरा, माझर कुंड और धुआं कुंड क्षेत्र के लोग अपने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित कर सकेंगे। वहीं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए शेरशाह सूरी मकबरे के आसपास अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिले में आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए सहयोग सह जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस माह आयोजित पहले चरण के शिविर में जिले के सभी प्रखंडों, 65 पंचायतों और 32 शहरी वार्डों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर के दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े सैकड़ों आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। साथ ही पात्र लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया गया, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इधर टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत रोहतास जिले में 1,06,000 से अधिक संदिग्ध और प्रभावित लोगों का निश्चय पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। समय पर जांच, निःशुल्क दवा और निश्चय पोषण योजना का लाभ दिया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार या वजन कम होने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की अपील की है। बीते दिनों जिले के जमुहरा स्थित गोबर आधारित प्राकृतिक पेंट निर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जिले में चल रही रोजगार सृजन गतिविधियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोहतास जिले की राज्य में बेहतर रैंकिंग की सराहना की। जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। योजना के माध्यम से अधिक लोगों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने से परिवार अपनी जरूरतों के अनुसार बिजली का उत्पादन कर सकेंगे, जिससे बिजली बिल में कमी आएगी। बीते दिनों जिले के सभी 229 ग्राम पंचायतों में पहली बार पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित ग्राम सभाओं में पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पंचायतों को विकास की सबसे मजबूत इकाई बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के सशक्त होने से ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंच सकेगा। सासाराम स्थित अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 100 बच्चे शास्त्रीय गायन, कथक, भरतनाट्यम, हारमोनियम और तबला का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जिला कला संस्कृति पदाधिकारी पंकज कुमार ने कहा कि यह केंद्र स्थानीय प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। रोहतास जिले में महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। सखी वार्ता और दीदी अधिकार केंद्र के माध्यम से महिलाओं और छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, साइबर सुरक्षा, घरेलू हिंसा से संरक्षण, बाल विवाह निषेध तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
0: रोहतास जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।

आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आपके द्वारा फरमाइश किए गए ईमेल संदेश पर आधारित कार्यक्रम ई मनपसंद।

आप सभी श्रोताओं का हमारा नमस्कार और स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। गीतों का सफ़र आज आप तय करेंगे लाल बहादुर दुबे के साथ। तो आइए, कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरा साया का एक गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार मदन चंदर। और इस गीत के लिए ईमेल के माध्यम से संदेश भेजने वाले आप सभी श्रोता हैं। आप हैं नरहन स्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी रानी, सदा फारजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले। काप सहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले। लखमिनिया जिला बेगूसराय से शमी मोहम्मद राइन, अखलाक अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार। यह संदेश है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहाकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुरहेकर। और ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। और राजस्थान गोविंदपुरा सीकर से आप सब हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। तो आइए, आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म मेरा साया का यह गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हीर रांझा से, आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल कैफी आज़मी के और संगीत है मदन मोहन का। इस गीत के लिए पसंद करने वाले आप श्रोता हैं जिन्होंने संदेश भेजा है। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। नया नगर सुपौल बिहार से श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से आप सब हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन। ये संदेश हमें मिला है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से आप सब हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और आपका पोता है मास्टर अल कबीर। और गांव फरांसी जिला हिसार से यह संदेश प्राप्त हुआ है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म हीर रांझा का यह खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, एक मनपसंद कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश और कंचन की आवाज़ों में। फिल्म है धर्मात्मा, बोल इंदिवर के और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनने के लिए आप सब ने अपना संदेश भेजा है। आप हैं कर्नाटक राज्य से कर्नाटक राज्य छीना तिरुपति से प्रकाश श्यामला, अश्विनी आनंद, मानवीत रमेश। और यह संदेश मिला हुआ है हमें वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से आप सब हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल का। ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया।

परिवार के तरफ से ये संदेश है, नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीता मुनि देवी, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे का। तो आइए आप सबकी

श्रोताओं, आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं ई मन पसंद कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ अपनी पसंद के गीत। यदि आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो ईमेल संदेश के माध्यम से हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisassaram akashvanisasaram@gmail.com। और हाँ, ध्यान रखें, अपराह्न 1 बजे से संध्या 5 बजे के बीच भेजे गए ईमेल संदेश को ही हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो आइए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की, गीत पंडित नरेंद्र शर्मा का और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा,

टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। और ये संदेश हमें मिला है दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। तो आइए सुनवाते हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का यह गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत अब आप सबकी पसंद पर हम सुनवाने जा रहे हैं। आप हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओमकार गायकवाड़ और साईं गायकवाड़ हैं। ये

संदेश हमें प्राप्त हुआ है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार और रामदेवरा से आप हैं दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का ये संदेश है। और ये संदेश हमें मिला है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का। तो आइए आप सबकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं फिल्म सावन को आने दो का एक गीत, आवाज़ है यशुदास की, गीतकार पी पंकज और संगीतकार हैं राजकमल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जुर्माना से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी की और संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनने के लिए आप सब ने हमें संदेश भेजा है। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का। ये संदेश हमें मिला है रेडियो दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। गम्हरिया जमशेदपुर से आप सब हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से आप हैं एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। यह संदेश हमें मिला है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, आप सबने भी सुनना चाहा है गीत। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप सब हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश ऋषिता का। यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है और यह संदेश है चौसा गोला बक्सर से जयराम बिंद, सीता मुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार का। गढ़मुक्तेश्वर काकाठेर की मड़ैया से राज कुमार, जानकी देवी, पुनीत कुमार और सपना कुमारी और भावना कुमारी का। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म जुर्माना का यह गीत।

श्रोताओं, आप आकाशवाणी सासाराम से सुन रहे हैं ई मन पसंद के अंतर्गत अपनी पसंद के कुछ गीत। आपसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी पसंद के साथ कम से कम दो या तीन फिल्मों के नाम अवश्य लिखें, जिससे हमें सुविधा होती है वह गीत चयन करने का, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी जो गीत आप पसंद करते हैं वह हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हम आपको नहीं सुनवाते हैं। फिर भी हमारा प्रयास होता है कि आपका नाम अन्य गीतों के साथ शामिल हो। तो आइए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म खिलौना से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। इस गीत के लिए पसंद आप सबने किया है। आप हैं गांव टोरोवाल, जिला नवान शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज़ भाई, मतीन भाई, शेख चांद, फारूक फूलवाले, सईद खलील, मुबीन भाई, मोहम्मद यासीन, शेख सलीम, आप सबने भी गीत सुनना चाहा है। और ये संदेश हमें मिला हुआ है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश।

का डुमराव बिहार से आप सब हैं, डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से आपने संदेश भेजा है राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोती माला गुप्ता, लाल बिहारी सिंह, बीरा सिंह, सुनील कुमार राय, गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राज किशोर सिंह और बड़क सिंह, और यह संदेश है गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद और सगुप्ता अंजुम का। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म खिलौना का यह गीत, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म आया सावन झूम के का टाइटल सॉन्ग। इस आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, रचना आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले आप सब श्रोता हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, मनीप वर्मा, रिहान खान, बेबी वैदही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, पायल जोशी और अकिता जोशी का। पद्मा टाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह का ये संदेश है। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का यह संदेश है। यह संदेश है मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रशीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान और सबिया अंजुमन खान। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंत में आया सावन झूम के फिल्म का यह टाइटल सॉन्ग।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ आपके द्वारा फरमाइश किए गए ईमेल संदेश पर आधारित कार्यक्रम ई मनपसंद संपन्न होता है। गीतों का सफ़र आज आपने तय किया लाल बहादुर दुबे के साथ। कार्यक्रम से अब हमें अनुमति दें, कल पुनः आप सब हमारे साथ होंगे, लेकिन कार्यक्रम होगा हेलो मनपसंद। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। शाम के 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या, जिसे हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
2: Free trade agreement is a great opportunity.
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं।

0: तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच

0: ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह सासाराम केंद्र है। साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप हमें सुन रहे हैं। रात्रि के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आइए कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवा रहे हैं मनोरंजन ओझा की आवाज़ में एक शिव भजन।

लोकधारा कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं एक झूमर, आवाज़ है टुक्कू पाठक की।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कुछ भोजपुरी लोकगीत। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बंदगी के अंतर्गत ख्वाजा और मनकबत।

श्रोताओं, कार्यक्रम बंदगी के अंतर्गत आप सुन रहे थे ख्वाजा और मनकबत। इसी के साथ कार्यक्रम बंदगी संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हमारे केंद्र से किया जाएगा। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प। स्वर सहयोग सुरभि और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार।
1: हिंदी रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को साहित्यिक साथी सुरभि का नमस्कार। श्रोताओं, साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि समाज का दर्पण और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। कविता और कहानी साहित्य की ऐसी दो सशक्त विधाएं हैं जो हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। कविता भावनाओं को शब्दों का संगीत देती है तो कहानी जीवन के विविध रंगों और अनुभवों को हमारे सामने जीवंत कर देती है। आज के शब्दशिल्प के इस अंक में प्रस्तुत होने वाली कविताएं और कहानी न केवल हमारा मनोरंजन करेगी बल्कि हमें सोचने, समझने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने की प्रेरणा भी देंगी। तो आइए साहित्य की इस सुंदर यात्रा का आनंद लें और शब्दों की इस दुनिया में कुछ नए विचार, नई संवेदनाएं और नई प्रेरणाएं खोजें। साहित्य वो दीप है जो केवल रास्ता ही नहीं दिखाता बल्कि मनुष्य के भीतर मानवता का प्रकाश भी जगाता है। तो श्रोताओं, इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे अगले खंड जरा सोचिए की ओर। जब जब मन ने प्रकृति को देखा तब तब शब्दों ने कविता का रूप लिया। पर्वतों की दृढ़ता, नदियों की कलकल, फूलों की मुस्कान और पंछियों का संगीत, इन्हीं से साहित्य ने अपनी सबसे सुंदर प्रेरणा पाई। प्रकृति और साहित्य का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना मनुष्य और उसकी संवेदनाओं का। प्रकृति साहित्य की शाश्वत प्रेरणा है। प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं बल्कि हमारी भावनाओं की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति भी है। यही कारण है कि साहित्य में प्रकृति का विशेष स्थान रहा है। भारतीय साहित्य में कालिदास जी ने ऋतुओं, पर्वतों, बादलों और वन उपवनों का ऐसा सजीव चित्रण किया है कि पाठक स्वयं उस दृश्य का हिस्सा बन जाता है। हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी कविताओं में हिमालय, फूल, पत्तियां और झरने मानो जीवंत होकर बोलने लगते हैं। वहीं महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति को अपनी आत्मा की संवेदनाओं से जोड़ा।

0: कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति में संघर्ष, शक्ति और परिवर्तन का संदेश देखा। रविंद्रनाथ ठाकुर जी की रचनाओं में भी प्रकृति मनुष्य के अंतर्मन की सच्ची साथी बनकर उभरती है। श्रोताओं, प्रकृति हमें धैर्य, संतुलन और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के छाया देता है, एक नदी बिना रुके बहती रहती है और हर ऋतु हमें परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना सिखाती है। साहित्यकार इन्हीं संदेशों को शब्दों में ढालकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। प्रकृति केवल आंखों को सुंदर नहीं लगती, बल्कि वो आत्मा को भी समृद्ध करती है और जब प्रकृति शब्दों से मिलती है तब जन्म लेता है साहित्य। जी हाँ, जो हमें संवेदनशील बनाता है, जीवन को नए अर्थ देता है और इस सुंदर सृष्टि से प्रेम करना सिखाता है। हर पुष्प में कविता बसती है, हर मौसम में एक गीत, प्रकृति से जो प्रेम करे उसका जीवन बन जाए संगीत। तो चलिए, इन्हीं विचारों के साथ इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे और आनंद लेते हैं अश्विनी कुमार आलोक जी के नवगीतों का।
1: दो छंद सुनिए। सृष्टि के मूल में है कविता, कविता के मूल में प्रेम बसा है। सृष्टि के मूल में है कविता, कविता के मूल में प्रेम बसा है। लत कविता को प्रेम की है और प्रेम को भी कविता का नशा है।

कसा है। दूसरा छंद, भांति लोहार की चाक कुम्हार का, कविता हलवा हे का हल है। भांति लोहार की चाक कुम्हार का, कविता हलवा हे का हल है। श्रम के सीकर पर कविता का, सदियों से विश्वास अटल है। दुख में साहस धैर्य यही है, दुख में साहस धैर्य यही है, सुख में संयमशील प्रबल है। दुख में साहस धैर्य यही है, सुख में संयमशील प्रबल है। सौम्य सुशोभन सत्य सनातन, भाव प्रभाव लगाव सकल है। सौम्य सुशोभन सत्य सनातन, भाव प्रभाव लगाव सकल है। और ये गीत है, जरा नजरें बचा कर लिखना,

वाली चिट्ठिया, यार वाली चिट्ठिया, जरा नजरें बचा कर लिखना प्यार वाली चिट्ठिया, इकरार वाली चिट्ठिया, यार वाली चिट्ठिया। चिट्ठिया की खुशबू खाली हम तुम जाने,

इकरार वाली चिट्ठिया, यार वाली चिट्ठिया, इकरार वाली चिट्ठिया, यार वाली चिट्ठिया, जरा नजरें बचा कर लिखना प्यार वाली चिट्ठिया।

चिट्ठिया बहकी बहारों में कुछ खुशबू उड़ेल ना, बहकी बहारों में कुछ खुशबू उड़ेल ना, रखना किताब में सीने में सहेजना।

सृजन से संबंध कर लेंगे, आओ हम आरंभ कर लेंगे। इस कठिन बोझिल समय में, ध्वंस में, भीषण अनय में,

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे अश्विनी कुमार आलोक जी द्वारा रचित नवगीतों का, और अब आइए सुनते हैं रूबी भूषण जी से उनकी ये प्रेरणादायक कहानी गिल्लू इज बैक।
1: आप सबको रूबी भूषण का नमस्कार। जहां एक ओर अपने घर पे रहने की आपा धापी, ढेर सारे काम और रोज कुछ न कुछ जद्दोजहद, साल के 2 महीने घर से दूर बच्चों के प्यार के तले बिना किसी जिम्मेदारी के रहना जिंदगी में एक नई स्फूर्ति भर देता था। प्रत्येक वर्ष की भांति मैं भी इस वर्ष अगस्त में अपने बेटे के पास सिएटल वॉशिंगटन चली गई थी। दिन बीतता गया, देखते देखते सितंबर आ गया। सितंबर में वहाँ पतझड़ का मौसम आ जाता है, कई पेड़ अपने रंग बदलने लगते हैं, पत्ते किसी के चमकीले नारंगी तो फिर कभी लाल दिखाई देते हैं, कई पत्तों का रंग तो बैंगनी रंग का भी हो जाता है। नीला आकाश, उसके नीचे पहाड़ और हरियाली के लिए प्रसिद्ध सिएटल। घर के दरवाजे सारे शीशे के बने होते हैं। मैं पीछे की तरफ, जिसे सब कोई कोर्टयार्ड कहता है, वहीं बैठकर चाय पीती थी। एक गोल सी टेबल पड़ी थी, सुबह नियमित 5 बजे उठकर योगा करती और उस टेबल पर गर्मा गर्म चाय का बड़ा सा कप लेकर बैठ जाती। बाहर देखती रहती, हाथ में कोई कहानी की किताब होती और बीच बीच में बदलते पत्तों का रंग देखती। बाउंड्री के बाहर लगी ऊंचे ऊंचे पेड़ और उसके झुरमुट से निकलता नारंगी और लाल रंग का छोटा सा नटखट सूरज, जो चंद मिनटों में बादलों की सीढ़ी से चढ़कर ऊंचे आकाश में पहुंच जाता। शांत वातावरण, चिड़ियों की चहचहाट और पास में ही तो था शेल्टन व्यू फॉरेस्ट। एक दिन की बात है, मैं कहानी में डूबी थी, तभी शीशे की दूसरी ओर मेरी नजर गई। देखा एक नन्ही सी गिलहरी मेरी ओर टकटकी लगाकर देख रही है, काली काली चमकदार आंखें। ऐसा लगा उसमें ढेर सारी जिज्ञासाएं भरी हैं। सिर को कभी दाएं हिलाती तो कभी बाएं, जैसे मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। निथी वो घास पर दौड़ लगाती, पर कभी मैंने उस पर गौर नहीं किया था, पर आज इतने नज़दीक। मैंने घर के डिब्बे से कुछ मूंगफली के दाने निकाले और उसके आगे बिखेर दिए। जैसे ही दरवाजा खोला, एक बर्फीली हवा का झोंका शरीर को भेद गया। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और भीतर से उस नन्ही जीव को ध्यान से देखने लगी। उसकी पीठ पर राम जी के उंगलियों के तो निशान नहीं थे। रामायण में एक प्रसंग है, जब राम जी लंका पर आक्रमण करने के लिए रामेश्वरम में पुल बना रहे थे, तब वहां बानर बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे। उसी बीच एक गिलहरी आती और बालू में लिपट जाती, फिर समुद्र में जाके उस बालुओं को धोती, फिर वापस आती। बड़े बांदरों ने उसे डांटा और बीच से कहा, चल हट, दब जाएगी। उसने कहा, मैं समुद्र को सुखा रही हूँ, इसमें बालू भर रही हूँ। प्रभु श्री राम मुस्कुराए, उन्होंने उसे अपनी गोदी में लेकर उसके पीठ पर प्यार से 3 उंगलियों को फेरा। कहते हैं ये वही राम जी की उंगलियों के निशान है, जो भारत में मिलने वाली इंडियन पाम स्क्वायरल के पीठ पर पाई जाती हैं। पर ये ठहरी अमेरिकन गिलहरी, इसके पीठ पर कोई निशान न थे। इससे पहले मैं कुछ सोचती कि देखा कि वो गोल गोल शंका भरी दृष्टि से मुझे देख रही है और छोटे छोटे कदम रखते हुए दानों तक पहुंची। एक दाना उठाया, 2 बार सूंघा, फिर दुम दबाकर चौकन्नी मुद्रा में दुम उठाकर पीछे

हट गई। अगले दिन वो फिर आई, फिर उसके अगले दिन आई। अब इसमें तनिक भी संदेह ना था कि हमारे और उसके बीच परिचय की डोर मजबूत होती जा रही थी। वो आती तो मुझे महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी गिल्लू याद आ जाती। शायद ऐसे ही दोनों में मित्रता हुई होगी। गिल्लू मैंने कब पढ़ी थी, पर पहली बार समझ आ रहा था, कहानियां जन्मती नहीं, लिखी नहीं जाती, जीवन जीते हुए अपने आप लिख जाती हैं। बार बार महादेवी वर्मा याद आती और मेरा मन कुलबुलाने लगता, क्यों ना अपनी नन्ही दोस्त की इस दोस्ती की कहानी लिखूं और समर्पित करूं महादेवी वर्मा के गिल्लू को। एक दिन मैं देर से उठी, तभी देखा कि दरवाजे पे एक आवाज आ रही है, ठप ठप टप टप। मैंने हंसते हुए देखा, देखा सामने खड़ी हुई और दोनों पंजों से रगड़ रही है शीशे के दरवाजे को। मैंने कहा, क्या हुआ, इंतजार कर रही थी? उसने मुझे इस तरह से देखा और गर्दन हिलाई जैसे मुझसे कह रही हो कि आज बड़ी देर कर दी तुमने आने में। खैर, मैंने मुट्ठी भर मूंगफली के दाने फिर डाल दिए और दरवाजा लगा दिया। एक एक करके दाने उठाती, सूंघती और न जाने कहाँ रखाती। मैंने धीरे से उससे पूछा, कहाँ ले जा रही हो सखी, जमा कर रही हो मूंगफली? उसने रुककर मुझे घूर कर देखा, जैसे वो मेरी बातें सुन रही हो, दरवाजे के पीछे से और गोल गोल घूमने लगी और कहा, अरे ठंड आ रही है ना, काम आएंगे, घर में बच्चे भी हैं। मैं चौंक गई, पहली बार उसकी अस्पष्ट हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। शायद यही प्रेम की भाषा है, जिसमें कोई संवाद नहीं होता, पर उसका मन बोल रहा था और मेरा मन सुन रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने देखा, चार गिलहरियां और आ गईं, सबसे छोटी खूब फुर्तीली और शरारती। मैंने हंसकर कहा, किस किस को ले आई? उसकी सबसे छोटी गिलहरी की आंखें चमक रही थी। तभी मेरी गिलहरी ने उसे जोर से धक्का दिया, जैसे कहा हो, जाओ जाओ, देखो मेरी दोस्त है। आज मैंने ढेर सारी मूंगफली निकाली और बिखेर दी। वे सब मेरे कोर्ट यार्ड के टाइल्स पे दौड़ लगाती, कभी एक दूसरे की दुम पकड़ती, कभी फूलों की क्यारियों के बीच दौड़ती, मानो मेरे घर का पिछला हिस्सा उनके लिए एक छोटा सा शेल्टन व्यू जंगल बन गया था। मेरे घर में जैसे ही कोई अन्य सदस्य आता, सब भाग जाती। अब उनकी दोस्ती मेरे दोनों पोतों से, शुभ और रिद्धित से भी हो गई थी। दोनों शैतान एक दूसरे को मूंगफली खिलाने में लगे रहते। उसे डर था, अचानक एक दिन शुभ के हाथों से डब्बा गिर गया और वो डर गया। उसे लगा मम्मा की डांट पड़ेगी। उसने जल्दी जल्दी मूंगफली उठाने की कोशिश की। अब छुटकू रिद्धित भी 2 साल का कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने सोचा, भैया जल्दी जल्दी मूंगफली समेट रहा है, तो उसने और बिखेरनी शुरू कर दी। तभी मैंने देखा, पूरा का पूरा गिलहरियों का दल वहां आ गया और दोनों के बीच से मूंगफली उठा उठा कर लेकर भागने लगा। मुझे बहुत हंसी आई, लगा सारे नटखट बच्चे एक से होते हैं, क्या जानवर और क्या आदमी। ठंड बढ़ती जा रही थी, सुबह की चाय का समय बिल्कुल अंधेरा ही रहता। वो नन्ही जीप भी अब देर से आने लगी थी, 10 बजे के बाद ही। शुभ की छुट्टी थी, वो मेरे पास आकर बोला, दद्दा आज फ्रेंड नहीं आई जिसे तुम गेली कहती हो? मैंने कहा, हाँ ठंड में बाहर नहीं निकलती, गेली को ठंड नहीं लग सकती, उसके तो रोए होते हैं ना। माई टीचर टोल्ड मी कि जिसके रोए होते हैं उन्हें ठंड नहीं लगती। दादा डू यू नो, गेली मत्ते करके खाती है। मैं हंस पड़ी, मत्ते? तब मुझे समझ में आया, वो कह रहा है गिलहरी नमस्ते करके खाती है, क्योंकि वो अपने दोनों हाथ को जोड़ लेती है। तभी शीशे पर फिर हौली से दस्तक हुई, ठक ठक टक टक ठक ठक। शुभ दौड़ कर गया। शुभ और वो नन्ना जीव अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और वो लोग भी आपस में मित्र बन गए थे। 3 दिनों तक सूरज ने फिर दर्शन नहीं दिए। चौथे दिन बादलों को हटाकर सूरज ने पीछे से हल्का सा झांका, इतने में उनकी पूरी फौज आ गई। फिर शुभ और रिद्धित उन लोगों के साथ धमा चौकड़ी आरंभ हो गई। फिर शुरू हुई बर्फीली हवा। दर्शना ने दोनों को कस के डांट लगाई, अंदर चलो,
इस बर्फीली हवा में बाहर

0: खड़े होगे तो ठंड लग जाएगी। मैंने देखा दूर चार दीवारी पर बैठी गिलहरियों की पूरी फौज दर्शना को ऐसे घूर रही हैं जैसे वो अपनी नाराजगी दर्शा रही हों। उसके पश्चात वे चले गए। ठंड बढ़ती जा रही थी, उनका आना कम हो गया था। दिन में 1 बजे के करीब मैं कॉफ़ी पी रही थी, तभी मैंने देखा गोल गोल आंखें किए हुए खड़ी है। मैंने मन ही मन उसे डांटा, आज इतनी ठंड में तुम क्यों आ गई? उसने अपनी गर्दन फिर जोर जोर से हिलाई, दोस्ती में मौसम का क्या काम? तुम आती क्या अगर मैं बुलाती? मेरे आंखों में आंसुओं की बूंद आ गई थी। मैंने उसे मूंगफली थपवाई, फिर उसने दाना सूंघा और भाग गई। और दूर जाकर उसने घूम कर देखा, लगा कह रही है बच्चे ठंड में बाहर निकल जाएंगे फिर कांपने लगेंगे। कुछ देर बाद बर्फीली हवा चलने लगी और आंधी पानी अंधड़ आ गया। सोमवार को मैं घर के बाहर निकली, देखा कूड़ादान सड़क पर किनारे रखने के लिए सब निकलते हैं। मैंने देखा कि पड़ोस के पीटर खड़े हैं, मुस्कुरा के बोले, हाय गुड मॉर्निंग रूबी, हाउ आर यू? मैंने कहा गुड मॉर्निंग। बोले डू यू नो टुडे इज वेरी कोल्ड मॉर्निंग, व्हेन यू आर गोइंग बैक? तुम कब वापस जा रही हो? मैं 3 दिन बाद चली जाऊंगी। मेरी बात करने में तनिक मन ना हो रहा था, तभी उन्होंने कहा, जानती हो अभी इतनी तेज हवा चली कि मेरे पीछे के कोर्ट यार्ड का 2 बड़ा पेड़ गिर गया। मेरा मन घबरा गया, क्या उसी में तो नहीं रहती थी मेरी गिल्लू? उसी पेड़ की तरफ तो वे सब भागती थी, क्या उनका पूरा परिवार? 10 दिनों बाद मैं भारत आ रही थी, मेरे आंखों में वो बैठ गई थी। हम मनुष्य के पास बंद दरवाजे होते हैं, घर भी बंद और दिल भी। शायद इसमें किसी का रहना मुश्किल था, वो जानवर थी, इंसानों की तरह भावनाएं तो व्यक्त करती थी पर शब्द नहीं थे, दिलों के बीच दीवार नहीं थी। रिश्ता बड़ा हो न हो, रिश्ता गहरा होना चाहिए। मैं वापस आ गई, गिल्लू की तरह महादेवी वर्मा के जीवन में जैसे वो आया था वैसे ही मेरे जीवन में ये कहाँ से आ गई थी गिल्लू? वही चंचल, वही नन्ही सी संवेदनाओं से भरा दिल। दोस्ती कभी आकार शरीर नहीं देखता, ये दिल देखता है। 1 सप्ताह बाद मैं चली आई, लेकिन वो नहीं आई। 1 सप्ताह बाद जब दर्शना का फोन आया, उसने कहा, माँ आप मुझे क्या दीजिएगा अगर मैं आपको एक खुशखबरी दूँ? बोल ना बेटा, तू जो मांग पहले ही बता, तुम ही दोनों तो मेरी जान हो, जो चाहो मांग लो। माँ आपकी सखी लौट आई है, गिल्लू इज बैक योर फ्रेंड, आज सुबह दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, जब इतने दिन नहीं आई। अरे नहीं माँ, मैंने उसकी फोटो खींची है, मैं आपको भेज रही हूँ। शुभ और रिद्धित आपकी तरह सुबह सुबह उसके सामने मूंगफली के दाने डाल देते हैं। माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरा गला रुंधाया था। वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ, आप कुछ देख लीजिए। दर्शना ने वीडियो कॉल किया। शीशे के दरवाजे के उस पार गोल गोल चमकीली आंखें मटकाती खड़ी थी मेरी गिल्लू, और लग रहा था कि वो पूछ रही हो, अब कब आओगी, कब आओगी तुम?
1: श्रोताओं, अभी आप रूबी भूषण जी से सुन रहे थे उनकी स्वरचित कहानी गिल्लू इज बैक। और इसी के साथ आज की ये साहित्यिक यात्रा अब यहीं संपन्न होती है। आपको आज के शब्द शिल्प का अंक कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें इस ईमेल आईडी पर feedback@aarpatna.gmail.com। और अब प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ साहित्यिक साथी सुरभि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प, स्वर सहयोग सुरभि और प्रस्तुति रजत कुमार की। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम थोड़ी

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। आइए, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में एक गीत, गीतकार मनोज मुंशीर और संगीतकार मित ब्रॉस। इसे हमने लिया है एल्बम बेदर्दी से प्यार का।

आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल को, एल्बम था बेदर्दी से प्यार का, इसका टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे, गीत मनोज मुंतशिर की थी और संगीत था मीत ब्रॉस का। अब हम आपको सुनवा रहे हैं छोड़ देंगे एल्बम का टाइटल सॉन्ग, आवाज़ परंपरा टंडन की है, गीत योगेश दुबे की और संगीत है सचेत परंपरा का।

परंपरा टंडन को आप सुन रहे थे छोड़ देंगे एल्बम का यह टाइटल सॉन्ग। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राहुल जैन की आवाज़ में दिल को मेरे एल्बम का टाइटल सॉन्ग। गीत वंदना खंडेलवाल की है और संगीत है राहुल जैन का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से आप सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रस रंग। आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं राहुल, क्षमा कीजिएगा, मेरा दिल भी कितना पागल है रिक्रिएटेड का टाइटल सॉन्ग। आवाज़ ममता शर्मा की है, गीत अशरफ अली बदस का और संगीत भी अशरफ अली बदस का ही है। तो आइए सुनते हैं।

मेरा दिल भी कितना पागल है रिक्रिएटेड का टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे। आवाज़ ममता शर्मा की थी। अब हम आपको सुनवा रहे हैं तेरा प्यार मिले ना मिले एल्बम का टाइटल सॉन्ग। आवाज़ें हैं आयुष्मान चौधरी और राजमणि की। गीत और संगीत नरेश कुमार त्यागी का है।

श्रोताओ, रसरंग कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। तुझे भूलना तो चाहा एल्बम का टाइटल सॉन्ग, आवाज़ जुबिन नौटियाल की है, रचना मनोज मुंतशिर की और संगीत है रोचक कोहली और निखिल विनय का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग संपन्न होता है। आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से हम बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। तो आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बरसात शीर्षक पर आधारित कुछ गीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फागुन का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। रचना कमर जलालाबादी की है और संगीत है OP नैयर का।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं हेमलता को, फिल्म है ओ बेवफा, गीतकार सावन कुमार और संगीतकार हैं वेदपाल शर्मा।

चित्रपट तराने कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत मदन मोहन का, और फिल्म है चिराग।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म धरती का गीत। रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत है शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में आवाम फिल्म का गीत। रचना हसन कमाल की है और संगीत है रवि का।

श्रोताओं, चित्रपट तराने के अंतर्गत आज आपने सुना बरसात शीर्षक पर आधारित कुछ फिल्मी गाने। इसी के साथ चित्रपट तराने कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। आइए अब जानकारी लेते हैं आकाशवाणी सासाराम से कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों तथा मौसम के बारे में। कल प्रातः 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा प्रातः 8:15 पर, और पसंद आपकी, जो कि पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम होता है, इसे आप सुनेंगे सुबह 8:20 से। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका, ये आप सुन सकते हैं पूर्वाह्न 9:10 पर।

विकास के सोपान साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। कल आप कार्यक्रम जो सुनेंगे उसका विषय होगा रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 1 के मोहल्ला डंगुलाडीह में विकास कार्य और योजनाएं। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे पूर्वाह्न 10:45 पर रसधार।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आप सुनेंगे सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5:10 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा शाम 5:30 पर। किसान वाणी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:10 से। सांझ गीत भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:40 पर। और गुड इवनिंग रोहतास जो कि सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होता है इसे आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। हेलो मनपसंद फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे कल शाम 7:50 पर।

समाचार संध्या का प्रसारण होगा शाम 8:45 पर। लोकधारा कार्यक्रम, भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे। महफिल गज़लों का ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। और चित्रपट तराने, जो कि हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होता है, इसे आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर।

कल के मौसम के बारे में जानकारी है कि ज़िले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है और कोई विशेष चेतावनी नहीं है। इसी के साथ आकाशवाणी सासाराम से कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों तथा मौसम के बारे में जानकारी समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार और तत्पश्चात अंग्रेजी समाचार। इसे हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: Muhammad Zubair. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब यहीं संपन्न होती है हमारी आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा। कल प्रातः 5:51 पर हम पुनः आपके बीच होंगे प्रातःकालीन प्रसारण सभा के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।